अभी संभल जाइए भाई, मत आने दीजिए जीवन में वो कठिन समय। पकड़िए प्रभु के चरण। संसार को अपना समझने की भूल हमसे आज तक हुई है, और ये जितना दुख जीवन में है ये उसी भूल का परिणाम है। और मैं साथ साथ कहता चलूं, लड़ झगड़ मत पड़ना किसी से, बस केवल इस बात को समझ लेना, संसार में जितनी आशा है, अच्छा आशा अपने से ही तो होती है, पराए से कोई आशा नहीं है, पराए से कोई आशा नहीं है। और संतों का सिद्धांत है, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। कई बार आपसे मैंने कहा, भाई संसार से सुख की आशा का नाम ही दुख है, और सुख की आशा किससे होगी, जिसे आप अपना समझेंगे। एक बार अपना प्रभु को समझ कर देखिए, सुख की आशा पूर्ण हो जाएगी, सदा सदा के लिए पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए व्यास जी ने समझाया था, व्यास राधिका रमण बिन कहूं न पायो सुख।

तन बलहीन हुआ, बुद्धि कार्य नहीं करती, दो पग चलने के लिए भी मैं आश्रित हूं, झूठे कुटुंबी के रंग भीनो और सांचे प्रभु सो चित नहीं दीनो। जो वस्तुतः अपना था, जो जन्म जन्म का साथी है, उसके चरणों में कभी चित्त नहीं दिया और बस इसी झूठे संसार के रंग में रंगा रहा। रोगी कह रहा है, कहां लग कहूं मूर्खता अपनी, अब मैं अपनी मूर्खता कहां तक कहूं। ढक लिया जैसे जैसे माया ने मेरे मन बुद्धि को, आवरण पड़ गया मेरी बुद्धि पर और मैं सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाया, मैं सही समय पर सही दिशा में पग आगे नहीं बढ़ा पाया। नयन गए और श्रवण हूं और गए मुख दंत, बुद्धि घटी तन गति लटी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, तृष्णा को नहीं अंत। अच्छा, एक ये भूल भी न करना कि आपको लगे कि वृद्धावस्था आने पर विषय से अरुचि हो जाती है। महाभारत में भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे रहे हैं और उस समय महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, विषय की वासना यौवन के काल में इतना पीड़ित नहीं करती जितना वृद्धावस्था में करती है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि पितामह, ये आप क्या कह रहे हैं, जब जब शरीर अशक्त है तो विषय में रुचि कैसे होगी। बहुत लोग ऐसा प्रयास करते हैं, भोजन कम कर देंगे और जाने कई कई साधन करते हैं कि मन से विषय की रुचि घट जाए। रस बल छूटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। हरि के भजन के अतिरिक्त मन को विषय से हटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, कोई साधन कुछ नहीं कर सकता, अंत में सब असफल है। तो महामहिम कह रहे हैं कि धर्मराज, मेरे जीवन का अनुभव है, वृद्धावस्था आने पर तृष्णा और बलवती होती है और अधिक दुखदायी स्थिति क्या होती है कि युवावस्था में तन में और मन में बल और शक्ति रहती है, इंद्रिय निग्रह करना सरल है, लेकिन वृद्धावस्था में तो तन अशक्त हो जाता है, बुद्धि कार्य नहीं करती और कभी कभी कभी कभी व्यक्ति इस बड़ी हुई तृष्णा के कारण दुस्सह दुख पाता है। इसलिए स्वयं को सुधारने का, स्वयं को संवारने का और मैं कहूंगा स्वयं को सजाने का जो श्रेष्ठ काल है वो यौवन का काल है। युवावस्था में तो श्रृंगार अच्छा लगता है, बहुत छोटा सा बालक श्रृंगार करे तो भी अच्छा नहीं लगता, वृद्ध श्रृंगार करे तो भी संसार उपहास करता है। श्रृंगार कब अच्छा लगता है, जब युवावस्था होती है। ऐसे ही भक्ति क्या है, ये उर अंतर का श्रृंगार है, भक्ति जीवात्मा का श्रृंगार है। तो जब तन पर यौवन हो उसी काल में भजन करिए, उसी काल में हरि की भक्ति करिए। मैं तो कई बार कहता ही हूं ना आपसे कि भक्ति जीव को सताती नहीं है, भक्ति जीव को सजाती है, वो श्रृंगार कर देती है जीव का, अनेक अनेक सद्गुणों से वो सुसज्जित अलंकृत कर देती है जीव को, प्रभु के मिलन के योग्य बना देती है। पर मैं फिर कहूंगा भाई, सही निर्णय तभी वस्तुतः सही है जब वो सही समय पर लिया जाए। भजन तो करना है पर देर से नहीं करना है, देर ही अंधेर है, भजन के मार्ग पर देर ही अंधेर है। भजन करना है, आज करना है, अभी करना है, मन लगे तो भी करना है और मन लगे ना लगे तो भी करना है, भजन करना है, केवल भजन के लिए भजन करना है। ये भूला बिसरा जीव प्रभु के सन्मुख हो जाए, प्रभु से संबंध जुड़ जाए, प्रभु के चरणों से तन मन की गति रति लग जाए, इसलिए भजन करना है। प्रभु अपने लगने लगे इसलिए भजन करना है, प्रभु मीठे लगने लगे इसलिए भजन करना है। टूटी खाट न छाड़ी भावे, सुत के सुत

और बहुत लोगों से मैंने सुना है भाई, वो कहते हैं महाराज मरने से डर लगता है, हमको मरने से बड़ा डर लगता है। टूटी खाट न छाणी भावे और सुत के सुत नातीन खिलावे, लेकिन ये सब करने के बाद भी तृष्णा को नहीं, अंत संसार का विषय ऐसा है वो स्पर्श करते ही बढ़ने लगता है और फिर बढ़ता ही चला जाता है। विषय के सेवन से कभी विषय से अरुचि नहीं होगी भाई। ये सब बात में समेट कर एक पंक्ति में कह दूं, विषय का सेवन करने से विषय से अरुचि नहीं होगी, विषय के त्याग से ही विषय से अरुचि होगी। ये आप आज समझ लें या कभी समझिएगा। आप सोचें कि आज सेवन कर ले, कल दूर हो जाएंगे, कल कभी नहीं आएगा। विषय के सेवन से विषय में रुचि बढ़ती है। अग्नि में घी डालो तो अग्नि प्रज्वलित ही तो होती है। विषय का त्याग ही विषय से दूर लेकर जाता है। और मैं तो कभी कभी एकांत में बैठता हूं तो विचार करता हूं, दो स्थितियां आती हैं, मन जानता है कि यह अनुचित है, इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बार बार उस ओर जाता है, बलात् कोई उस ओर ले जाता है मन को। ना करो तो भी मन दुख पाता है, करो तो भी मन दुख पाता है, पर विचार करना चाहिए, अगर ना करके भी दुख है और करके भी दुख है तो फिर ना करके ही दुख पा लेना चाहिए। कम से कम उस ना करने की अवस्था में आप तो अपने साथ होंगे, आपका आत्म बल तो उस समय बना रहेगा। दुख तो है और संसार में सुख की आशा लगाना ही बड़ी मूर्खता है, तो दुख ही दुख है भाई। मैं तो इसलिए आपको बीच बीच में कह देता हूँ, स्मरण करा देता हूँ कि साधन का पथ है भाई बड़ा कठिन है, खरोई कठिन है भजन डिंग डरीबो। संसार सरल है, विषय का सेवन बड़ा सरल है, खूब आनंद आता है थोड़ी देर के लिए तो, लेकिन संसार का विषय का सेवन करते करते कब जरा जीर्ण हो जाती है ये देह, कब चेहरे पर झुर्रिया आ गई, कब बाल सफेद हो गए, रोज देखते थे आप दर्पण में, देखते ही देखते ये झांकी हो गई और अभी आगे जाने और क्या दिखाई पड़ेगा, नैन गए और श्रवण हूं और गए मुख दंत। हमारे वृंदावन में एक संत थे, भजन करते थे, बड़े विनोदी स्वभाव के थे, युवावस्था में ही आ गए थे, बड़ा सुंदर उनका दर्शन था, वृंदावन में रहकर भजन किया, वृद्धावस्था आई तो आते जाते कोई भी बाबा बाबा कहकर चले जाता था, तो हंसते हुए कहते थे, बाल सफेद देखकर कहते थे, बोले केशव केसन अस्करी जो अरिहु न कराही, बोले इन श्वेत केशों ने तो हमारे साथ में वो किया है जो शत्रु भी नहीं करता। बोले केशव केसन अस्करी जो अरिहू न कराही, किसी ने कहा बाबा ऐसा क्या कर दिया इन केशों ने, बोले अरे चंद्रमुखी मृगलोचनी और बाबा कह कह जाए। तो भाई देखते ही देखते ये स्थिति आ जाएगी। मैंने तो कहा ना कि जैसा जल वो कूप में वैसा बाहर आए, महात्मा खींचे तो भी उसमें से वही आएगा, दुरात्मा खींचे तो भी वही आएगा, तन की गति तो भाई वही होनी है, वही होगी, इसलिए काल चुरैया चुग रही। और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज तो कहते हैं अरे भूले भूले कोई भूले, तुम जिन भूलो मालाधारी, व्यास जी ने कहा मूंड मुंडाए की लाज नहीं भइए, आपको तो वैष्णव वेश मिला है, हरि का नाम मिला है माथे पर, ये हरि मंदिर है, गले में तुलसी की कंठी है, हाथ में जप की माला है, तुम जिन भूलो मालाधारी, बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान।

यह रुचै मुख नाम ना आवे, जैवो जम के घर ही भावे। और उसमें दुर्दशा में दुर्दशा क्या है कि पीड़ा पा रहा है मन, पर फिर भी रुचता संसारी है, फिर भी इच्छा संसार की है। अभी मैं आपसे कह रहा था ना, छोड़िए एक बार मन को, छोड़ दीजिए, देखिए मन कहाँ जाता है, सहज में मन किस ओर जाता है, सहज में मन संसार का स्पर्श करता है कि नहीं, ये देखिए और देखते रहिए। रोगी यही देख रहा है कि मैं इतना दुख पा रहा हूँ, देख लिया संसार का हर रंग कच्चा है, झूठा है, पर इतना होने पर भी कैसी माया ने मेरी मति फेरी है, कैसी मेरी मति भ्रमित हुई है कि यह रुचै मुख नाम न आवे, तो भी संसार रुचता है पर मुख में हरि का नाम नहीं आता, मुख में हरि का नाम नहीं आता। और जैवो जम के ही घर भावे। सुनता हूं शास्त्रों पुराणों की कथाएं, सुनता हूं कि अंत में जम के घर जाना पड़ेगा, पर जम के घर जाना तो ठीक है लेकिन संसार नहीं छोड़ना है, ऐसी मन की दुर्दशा हो गई है। और ये आपकी मेरी भाई हम सबकी कहानी है, ये आपकी मेरी हम सबकी कहानी है। एक बात गांठ बांध लीजिए, आज भजन नहीं किया कल कभी आएगा नहीं, कल कभी नहीं आएगा। भजन आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और मैं तो आपको एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि अरे कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, देखिए उनका स्वभाव कैसा है। रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किसो, श्री ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, राई के दाने जितना कोई उनका भजन कर ले उसे अपना बना लेते हैं, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। और सही कहते हैं संत भाई, अस प्रभु छाण भजहि जे आना, ऐसे प्रभु को छोड़कर कोई संसार का भजन करे तो ते नर पशु बिन पूछ समाना। और कल एक और बात मैंने आपसे कही थी, विवेकहीन पशुवत है पर एक प्रकार से पशु से भी गया बीता है। मनुष्य अगर विचार नहीं करता तो वो पशु नहीं है, पशु से गया बीता है, क्योंकि पशु में तो विवेक की संभावना नहीं है, आप में तो संभावना है, आप में तो संभावना है। तो मनुष्य यदि भजन नहीं करता है, मनुष्य यदि आत्म कल्याण का प्रयास नहीं करता है, मनुष्य यदि विवेक युक्त होकर विचार नहीं करता है तो वो पशुवत नहीं है, वो पशु से भी गया बीता है। पशु पंछी ताको समय मानत अपनो राई, मन लागो अति झूठ सो तज सांच ही सुख मूल। मन लग गया इस झूठ में, अब क्या करें, अब हटाए हटता नहीं। और ये सरल नहीं होगा भाई, आज तो आप में बल है, शक्ति है, सत्संग में जा सकते हो, दो घड़ी बैठकर भजन कर सकते हो, ग्रंथ का पाठ कर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, आने जाने में स्वतंत्र हो। कल जब निर्भर हो जाओगे, कल जब आश्रित हो जाओगे और कुछ जीवन में नहीं रहेगा, तब आपको लगता है भजन हो पाएगा? कितना क्षण भंगुर ये देह है,

झिली ना झिली, इसीलिए कहा है हरि का नाम रटले री रसना, फिर अंत समय ये हिली ना हिली। अरे नेक सी पीड़ा कहीं तन में हो जाए, सब भजन साधन छूट जाता है, सब भजन साधन छूट जाता है। नेक सत्तन में कष्ट हो, मन में कष्ट हो, इसलिए आज ये सुख का जो समय है इसका लाभ लीजिए। ये सुख सदा के लिए आपके पास रह जाए, आपके निकट रह जाए, इसका सदुपयोग करिए। भजन करिए, और कब करिए? आज करिए, अभी करिए, यहीं से आरंभ करिए। और छाण सुधा के सुख फल ही जाए गही विष शूल, ये विष के फल मैंने खाए हैं, और जो

और जैसे जैसे तन जीर्ण हुआ वैसे वैसे लोभ का रोग और बढ़ता चला गया। युवावस्था में तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, लड़ लेता है शरीर रोग से, वृद्धावस्था में तो वो भी नहीं रहता। ये पूरी चर्चा का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे तन जीर्ण होता है, संसार तो यही सिखाता है ना भाई, ये कोई अवस्था है भजन करने की, जब समय आएगा तब भजन करेंगे। संसार तो यही शिक्षा देता है, संसार तो यही सिखाता है, संसार तो कहता है मन लगाकर काम करो, संसार की शिक्षा तो यही है भाई, मन लगाकर काम करो। हमारा काम मन लगाकर करो, हमारे काम में कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए, हमारा काम करो, समय पर करो, मन लगाकर करो, यही संसार की सीख है। पर भाई संत सिखाते हैं मन लगा के हरि का नाम लो, संसार का काम बुद्धि लगाकर करो, माने जितनी आवश्यकता है उतना कर दो, उसके साथ बहुत लिपटने चिपटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बुद्धि का प्रयोग करिए, इन संतों की बात को सुनिए, फिर मनन करिए, चिंतन करिए, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या तात्पर्य है इनका, बुद्धि का प्रयोग संसार में करिए, निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना करिए, पर मन लगाकर हरि का नाम लीजिए। यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन है सचु पाए। राज महाराज जी ने आज के प्रसंग के बिल्कुल अनुकूल ये पंक्तियां मुझे लाकर दी हैं, और मैं चाहूंगा ये बड़ा सुंदर श्री चाचा वृंदावन दास जी का पद है, आप सब साथ साथ गाना।

और आपके हाथ में जो वाणी है उसके बिल्कुल अंतिम पृष्ठ पर चार पंक्तियां लिखी है श्री ध्रुवदास जी की हैं, प्रार्थना की है युगल चरणों में। सत्र का विश्राम इन्हीं पंक्तियों से किया करेंगे।

रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदे सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिए। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता।

0: शंभु शंभु शंभु शिवा महादेवा
1: शिवा महादेवा।
0: और रेडियो महारानी भी सुनते रहिए क्योंकि उसमें काफी हटके चीजें आती है, उसीलिए उनका टैगलाइन भी कुछ हटके है।

0: The most powerful leadership tool you have is your own personal example. You are listening to thoughts of Mr. Sonu Sharma, who is a life coach and motivational speaker. Keep listening, Radio Maharani, Kutch, Hatke.
1: हमने कुछ किया पूरी दुनिया के अगेंस्ट जा करके, या अपना कोई डिसीजन लिया कि मुझे ये सही लग रहा है, लोगों ने मना भी किया, फिर भी हमने किया और उसमें हम फेल हो गए। अब वो बार बार हमको अपना वो फेलियर याद आ रहा है, नहीं भी आ रहा तो दुनिया हमको याद दिला रही है आकर के, है ना। जैसे हम कुछ और करने के बारे में सोचते हैं तो लोग हमको वाला फेलियर याद दिला देते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं है, वो देख पहले भी तूने किया था, क्या हुआ। तो बाहर से भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और अंदर भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। चलो बाहर से जो अटैक हो रहा है उसको तो फिर भी हैंडल कर सकते हो, उनसे लड़ लो झगड़ लो, तो वो भी कहेंगे यार क्या लड़ाई झगड़ा करना है, छोड़ो बात मत करो इनसे इसके बारे में। बट अंदर जो अटैक हो रहा है उसको कैसे हैंडल करें, राइट। सारा खेल यही है कि हमारे अंदर हर वक्त कई तरह के अटैक्स चलते रहते हैं, उससे कैसे बचोगे। आप चाहे पहाड़ पे चले जाओ, चाहे मूवी देख लो, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ देर के लिए आप उसको भूल सकते हो, ठीक है ना। दारू पी ली कुछ देर के लिए, भूल गए, फिर याद आ जाएगा। जैसे होश में आओगे फिर से याद आ जाएगा, सारी बातें दिमाग में घूमने लग जाएंगी। तो खुद से कैसे बचे, समझ रहे हो। यहां पे जो लिखा हुआ है ना सेल्फ रिफ्लेक्शन, इसका मोटिव यही है कि मेरे सारे सेशंस का एसेंस क्या है। ये नहीं है कि बाहर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर जो हमारे गड़बड़ हो रही है उसको कैसे हैंडल करना है, अंदर जो अटैक्स होते रहते हैं थॉट के लेवल पे हमारे ऊपर उसको कैसे फेस करें। क्योंकि अगर आप उसको फेस कर गए तो बाहर आपके लिए फेस करना क्या बड़ी बात है, समझ गए ना। और एक्चुअल में बाहर कोई अटैक होता नहीं है, होता अंदर ही है। बाहर अगर कोई आपको कुछ बोल भी रहा है तो अल्टीमेटली चॉइस आपके हाथ में है कि उसका असर आपके ऊपर हो या ना हो, अगर इस बात को हम समझ पाए तो। आप चाहो तो अपने मन में बोल दो अरे ये तो है ही ऐसा, समझ गए, असर होना बंद। आपको नहीं इसने ऐसा क्यों बोला तो असर ज्यादा होगा। जैसे कोई अगर कोई आपको पता है कि कोई पागल है, वो आकर के आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा, तो क्या उसके उसके बारे में आप बैठ करके सोचोगे 10 दिन तक कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो किसी का बेसिक नेचर है उल्टे सीधे काम करना या उल्टा सीधा आपको बोलना या आपको तंग करना, तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है उसका बेसिक नेचर है, कोई बात, तो जैसे आप अंदर से बोल देते ना कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, उसका जो नेचर है उसका है, मेरा जो नेचर है मेरा है, तो उसका असर आपके ऊपर होना बंद हो जाता है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, बट ये एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है। जो आंसर है वो ये, डू यू पीपल वांट कि इस क्वेश्चन को मैं टच करूं डीपली, कि हमसे कोई गलती हो गई, अब वो गलतियां क्या हो सकती है। गलतियां हो सकती है रिलेशनशिप से रिलेटेड, ये तो बहुत ज्यादा हो रही है आजकल गलतियां फेसबुक से गलतियों की शुरुआत होती है, फिर पता नहीं गलतियां कहां की कहां पहुंच जाती हैं, है ना। अब वो रिलेशनशिप खत्म हो गई, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो तो आपको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है, ऐसे ही होता है ना कि मैंने ये कैसे कर दिया, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूं, मैं कितनी बेवकूफ हूं, ऐसी ऐसी चीजें आती है माइंड में, हाँ कि मैं तो समझ नहीं पाती हूं चीजों को। नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि समझ एक दिन में डेवलप नहीं होती है, धीरे धीरे होती है, कोई मां के पेट से समझदार नहीं निकलता है, राइट। जब ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे और उन एक्सपीरियंसेस से आप सीखोगे तभी तो आपको समझदार कहेंगे। जिसकी लाइफ में जितनी ज्यादा गड़बड़ हुई होगी और अगर उसने उससे सीख लिया है तो वो उतना ही समझदार है। विजडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फेलियर्स एंड सेटबैक्स एंड योर पावर ऑफ ओवरकमिंग इट। इसको ध्यान से समझ लो। तो जो भी गड़बड़ हुई है आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, उसको पहले तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है गड़बड़ हुई है, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। तो हो सकता है आपको जवाब मिले कि कहीं मैंने कमिट करने में जल्दीबाजी तो नहीं कर दी थी इस रिलेशनशिप में, मे बी कि 4 दिन की रिलेशनशिप थी और मैंने फटाफट से डिसीजन ले लिया। तो इससे आपने क्या सीखा कि अब जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है लाइफ में, स्पेशली बड़े डिसीजन तो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। कौन सा कपड़ा खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है, ये तो आप जल्दी में भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-20 रुपए महंगा भी खरीद लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम क्या है वहां पर पूरा टाइम लगाते हैं, 10 दुकानों में जाएंगे, ट्राई करेंगे, 100 रुपए के पीछे पता नहीं कितनी किचकिच करेंगे, 100 रुपए भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 20-20 रुपए के पीछे कितनी किचकिच करेंगे। और लाइफ के जो बड़े डिसीजन है वो कैसे लेते हैं हम? बहुत सारे लोग तो लेते ही नहीं है, उनके लिए वो डिसीजन कोई और ले लेते हैं, करियर का डिसीजन, रिलेशनशिप का डिसीजन, ये वो लेते हैं तो जल्दी में ले लेते हैं, होता है ना। स्पेशली हमारे इंडिया में बड़ा चलता है जिसको अरेंज मैरिज बोलते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट अरेंज मैरिज, इट इज अ वेरी वेरी वेरी क्या कहूँ, वेरी नो कमेंट्स। तो जो भी है, अरेंज मैरिज में क्या गड़बड़ मुझे लगती है, मुझे जो जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो मुझे गड़बड़ लगती है वो क्या है कि लड़का लड़की मिले और दोनों तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया। अरे बहुत बढ़िया है, अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तू हाँ कर दे, और उसने हाँ कर दी, ठीक है बढ़िया है, मतलब कि घर वाले जो है उनको बढ़िया लग रहा है या लग रही है। आप तो थोड़ा तो टाइम लगाओ, एक घर खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं, यहाँ कुछ खरीद नहीं रहे हो माना, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसीजन है अपनी लाइफ का, इनफैक्ट सबसे बड़ा डिसीजन है। गाड़ी गलत ले ली तो उसका सोल्यूशन है, कबाड़ी को दे सकते हो, ये पति को किसको कबाड़ी में दोगे। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो इसको पकड़ के रखो, दिस इज कॉल्ड विजडम। ये मैं कहां से बोल रहा हूं, शायद अगर आज से आप 20 साल पहले मेरे से ये सब बातें करते तो मैं नहीं बोल सकता था ऐसा। मैं क्या कहता, अरे करो करो करो, और पीने वाला करो, लगा दो बियर, लगा ये करो, बाइक ना लटा के मोड़ेंगे, मैंने सारे काम करे, ऐसा नहीं करे हैं, लटाए भी और कई बार खुद भी लेट गया, और पीछे वाला कहता यार मैंने क्या गलती की, मुझे ऐसे ही ठोकता रहता है, आप समझ रहे हो। तो ये सब काम मैंने करे हैं, तो वो करके मैं अब आपको बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा मत करो, मैं कह रहा हूं समझ लो कि करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, कर भी दिया तो उसे सीख लो, ग्रो आउट ऑफ इट। मैं ये नहीं कह रहा गलतियां मत करो, अरे मैंने खुद बहुत गलतियां करी है, तो मैं आपको कैसे बोलूंगी गलतियां मत करो, गलतियां करो बट लर्न फ्रॉम इट, सही काम करो लेकिन उसमें चिपके मत रहो कि मैंने पता नहीं क्या उखाड़ दिया, समझ गए, मैंने ये सही काम कर लिया, मेरी फैमिली में और जो लोग हैं वो नहीं कर पाए, व्हाटएवर, आपने टॉप कर दिया कहीं पर, तो अपनी ईगो को मत बढ़ाओ, ग्रो आउट ऑफ इट, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। मिल रहा है आपको जवाब, मिल रहा है। एक बार मैं इसको थोड़ा और डीपली टच करता हूं, तो जब भी हमारे अंदर से ये आता है कि हम पुरानी सिचुएशंस के बारे में सोच सोच करके दुखी हो रहे हैं, तो उससे सीखो, गो इन टू द रूट कॉज ऑफ इट, ताकि वो जो गलती आपने करी वो दोबारा मत करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। पहली बार, अब देखो कितनी मजेदार चीज निकल के आ रही है बात करते करते, पहली बार अगर आपने लाइफ में कोई भी गलती करी है तो वो गलती नहीं है, समझ गए, अनजाने में करी है तो वो गलती नहीं है, लेकिन उसी गलती को आप बार बार कर रहे हो ये गलती है। मुझे एक चीज की नॉलेज ही नहीं है और मैंने सही सोच करके किया लेकिन मेरे साथ में गलत हो गया, ये गलती नहीं है। कुछ भी नया करेंगे तो उसमें सही और गलत होने की तो पॉसिबिलिटी रहेगी ना, सक्सेस फेलियर की तो रहेगी ना, तो आप फेल हो गए इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उस फेलियर से कुछ सीख नहीं रहे हो और दुखी हो रहे हो, ये गलती है, ये ब्लंडर है। अपनी गलतियों के बारे में सोच सोच करके आप दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये गलती है। कोई भी गलती आपकी लाइफ की इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपके ऊपर हावी हो सके, हमेशा अपने अंदर इस बात को याद रखना, मेरी लाइफ की जितनी भी बड़ी से बड़ी गलतियां हैं मैं उससे बड़ा हूं, अपने आप को ये बोलो। आप कितनी भी बड़ी गलती कर लो, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आपकी गलती को एब्जॉर्ब कर जाए। अगर आप यूनिवर्स के एंगल से देखोगे तो आपकी गलती बहुत छोटी लगेगी जिसको आप बड़ी समझ रहे हो। कोई भी गलती बहुत बड़ी नहीं है, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं है जिसको माफ ना किया जा सके, चाहे फिर वो आपने करी चाहे किसी और ने करी। तो गलतियों से सीखो, सीख करके क्या होगा, आप धीरे धीरे मैच्योर होते चले जाओगे, अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओगे। ये दोनों चीजें तभी होंगी जब आप सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गलत रिलेशनशिप में एंटर करके ये सीखा कि मुझे पेशेंस रखना है लाइफ में, तो क्या ये छोटी क्वालिटी है? डू यू थिंक पेशेंस इज स्मॉल? मतलब पेशेंस इज सो बिग यार, पेशेंस से आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, सही डिसीजंस ले सकते हो, सही चॉइसेस ले सकते हो, अगर आप में पेशेंस है तो आराम से सोच समझ करके डिसीजन लेना है, ठीक है ना।
2: माय क्वेश्चन इज दैट what how should one maintain mental stability and balance of mind in situations of life and death?
1: बहुत भारी सवाल है वैसे तो, बट ये सवाल क्योंकि हर एक को फेस तो कभी ना कभी करना ही है। जो लोग आपके आसपास में जिनको बहुत प्यार करते हो उन्होंने मरना ही। अब मैं देखो कितने आराम से बोल जाता हूँ, बिकॉज मेरे लिए मैटर नहीं करती। अब ऐसा क्या हो कि आपके लिए भी मैटर ना करे, समझ गए ना? वो इंसान जिससे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, कोई भी हो सकता है, वो मर सकता है ना। आज हम खुद भी मर सकते हैं, तो कैसे अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि इन सब चीजों का भी हमारे ऊपर असर ना हो। ऊपर ऊपर से तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता ऊपर से नहीं होगा, अंदर से नहीं। ऊपर और अंदर का मतलब हमको समझ आ रहा है? देखो इसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा, व्हाट इज आउटर व्हाट इज इनर। आप एक मूवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो और रो रहे हो, तो ऐसा लग रहा है आपके ऊपर भी असर हो रहा है और अंदर भी हो रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो मूवी है। तो आपकी अचीवमेंट्स का भी आपके ऊपर असर ना हो, आपके फेलियर्स का भी आपके ऊपर असर ना हो, दुनिया जो आपके बारे में कहती है उसका भी आपके ऊपर असर ना हो, हेल्थ से रिलेटेड आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए बॉडी में उसका भी आपके ऊपर असर ना हो। ये सब चीजें ऐसी हैं जो होनी होनी है आप लोगों के साथ। अभी हो सकता है समझ नहीं आ रही होंगी, पर जैसे जैसे एज बढ़ेगी धीरे धीरे समझ आएगी ये सारी बातें। उसके अलावा आपके आसपास में अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार हो गया जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तब भी आपके ऊपर असर ना हो। और भगवान ना करे अगर वो इस दुनिया से चले गए, उसका भी आपके ऊपर असर ना हो। क्या ये हो सकता है? पहले तो सवाल ये है, क्या लगता है आपको, हो सकता है नहीं हो सकता है? सच बोलो, ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ बोलने के लिए बोलना है। नहीं हो सकता, हो सकता है, हो सकता है। क्यों कह रहे हो कि नहीं हो सकता है? देखो धीरे धीरे अगर आपको ये समझ आ जाए, अगर ये नहीं समझ आया तो नहीं हो सकता। मान लो कि जो मैं आपको बात बोलने वाला हूं, एक बार को मान लो कि क्या पता वो सच हो, मैं सच बोल रहा हूं अपनी तरफ से, लेकिन आपको हो सकता है समझ ना आए। मुझे समझ आ गई है इसलिए मेरे लिए वो सच है। वो क्या है? अब इससे आपको जवाब मिल जाएगा कि लाइफ में बैलेंस कैसे बनाते हैं। बैलेंस का मतलब लोग ये समझते हैं कि हमेशा हम खुश रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे। नहीं जी, रो रहे हो तो खुल के रोना है, ठीक है? दुखी हो रहे हो तो पूरी तरह से होना है, हंस रहे हो तो खुल के हंसना है, जी रहे हो तो खुल के जीना है। गेम है जिसमें मैं एक प्लेयर हूं, मैं गेम खेल रहा हूं, लेकिन जो मैं गेम खेल रहा हूं उसमें जो भी कुछ हो रहा है उसका एक्चुअल मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा है। ये बात अभी हमको समझ नहीं आती है। अगर ये बात हमको समझ आ जाए, जो मैं रोल की बात करता हूं, मैंने अपने हाउ टू कंट्रोल योर माइंड वाले में भी एग्जांपल दिया था, एक रोल का एग्जांपल दिया था कि आप एक रोल प्ले कर रहे हो और आप एक्चुअल में कुछ और हो, तो आपको समझ आए कि मैं हूं कौन और जो मैं एक्चुअल में हूं उसके ऊपर कुछ भी हो रहा है इस खेल में उसका कोई असर नहीं होता है। तो बाहर से देखने में लग रहा होगा कि आपके ऊपर असर हो रहा है, शायद आंसू भी आ रहे होंगे, शायद आप हंस भी रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे, सक्सेसफुल हो रहे होंगे, लेकिन अंदर से यू विल ऑलवेज बी अनटच्ड। अगर ये नहीं पकड़ में आया तो कोई सोल्यूशन नहीं है ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछोगे तो। क्योंकि क्या होगा, आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये गेम है, लाइफ एक गेम के जैसी है, लेकिन आप इस गेम में सीरियस हुए पड़े हो, तो क्या होगा, आप सही डिसीजंस ले ही नहीं सकते। आपके जो भी डिसीजंस होंगे वो ज्यादातर गलत ही होंगे। क्यों गलत होंगे? जबकि आपकी सलाह सही होगी, आप अपने दोस्तों को सलाह दोगे वो सलाह सही होगी, लेकिन खुद को सलाह दोगे वो गलत होगी। क्यों? मैं बीच में आ गया ना, बस इसको ध्यान से समझ लो। ये बात पकड़ में आ रही है ना कि जब हम सलाह देते हैं किसी और को तो बड़ी सही सलाह देते हैं, जब हम खुद उस सिचुएशन में होते हैं तो हम बेवकूफों की तरह एक्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने आप को उस सिचुएशन से आइडेंटिफाई कर लिया है। जैसे गेम खेलते खेलते सपोज आप भूल ही गए तो क्या होगा, एकदम से वो बंदा मरा या उसको चोट लगी या उसका पैर टूटा, हड्डी टूटी, तो आप रोने लग जाओगे, चीखने चिल्लाने लग जाओगे। मतलब हो क्या रहा है, हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए उस गेम में, डिटैच होकर के उस गेम को नहीं देख पा रहे हैं। इसको ये कहना भी गलत नहीं होगा, हम भूल ही गए हैं कि ये खेल है, ठीक है ना? खेल में हम बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, लाइफ को एक खेल की तरह देखो। मेरे लिए लाइफ कैसी है, मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे व्हाट डज लाइफ मीन टू मी, मेरे लिए जो बॉडी है ना और जो माइंड है, माइंड मतलब समझते हो कि जो प्रोग्रामिंग है जिसके थ्रू ये बॉडी काम कर रही है, एक सॉफ्टवेयर है एक हार्डवेयर है, क्लियर है ना। जो हमारे थॉट्स हैं वो सॉफ्टवेयर के जैसे है, बॉडी हार्डवेयर के जैसी है, जैसा सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है वैसी बॉडी एक्ट कर रही होती है। सॉफ्टवेयर निकाल दो बॉडी में से तो बॉडी कैसे एक्ट करेगी, क्लियर हो रहा है ना। तो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है एक हार्डवेयर है, तो मेरे लिए लाइफ क्या है, मैं दोनों से ही अनटच्ड हूं, ना तो मैं हार्डवेयर हूं ना मैं सॉफ्टवेयर हूं, मैं इन दोनों को क्रिएट करने वाला हूं। बन गया ना खेल, पहचानना की जरूरत ही नहीं, आप हो, आप इस बोतल से अलग हो, इसमें पहचानने की क्या जरूरत है। आप बोतल को देख रहे हो, बोतल आपको नहीं देख रही है, क्या ये फैक्ट है या कोई इल्यूजन है? फैक्ट है भाई। आप अपनी इस बॉडी को देख सकते हो लेकिन ये बॉडी आपको नहीं देख सकती, ये फैक्ट है या इल्यूजन है? फैक्ट है। तो फैक्ट के बारे में क्या सोचना है, क्लियर हो गया। तो मैं जानने वाला हूं इस पूरे के पूरे खेल को, तो अब इससे क्या होगा, देन यू विल बिकम एन आर्टिस्ट, एक कमाल के खिलाड़ी बन जाओगे आप लाइफ के। लाइफ आपके लिए खेल जैसी होगी, मतलब एक कमाल का खेल। अब खेल क्या है कि किस तरह से इस हार्डवेयर को, मतलब कि इस बॉडी को, और इस सॉफ्टवेयर को, मतलब कि माइंड को प्रोग्राम किया जाए, इस बॉडी को डिजाइन किया जाए, और इसके आसपास में जो रिलेशनशिप्स हैं, जो बिजनेस है, जो काम है, जो भी कुछ मैं कर रहा हूं इस सोसाइटी के लिए या अपने लिए या ये वो, सबको कैसे परफेक्टली किया जाए। तो परफेक्ट कभी हो नहीं सकता, लेकिन नहीं भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खेल है। समझ पा रहे हो? तो धीरे धीरे, अगर और कुछ नहीं तो यार मेरी इतनी सी बात को समझो, ज्यादा डीप में मत जाओ, इतनी सी बात को समझो कि जिंदगी एक खेल है। अगर ऐसा आप मान लेते हो तो आपका गया क्या, ये बताओ मुझे। आपको सब कुछ मिल गया लेकिन आपका गया कुछ भी नहीं, क्योंकि अब इस खेल को आप अच्छे से खेल सकते हो। फिर 24 घंटे आप यही दिमाग लगाओगे कि अब कहां पर इस खेल में ना क्या कमी रह गई है। जैसे वीडियो गेम खेलते हैं, हम सब खेलते हैं, उसमें क्या पहले दिन में जब आप खेल रहे होते हो आप एक्सपर्ट हो जाते हो, पहले दिन में क्या 10वें लेवल पे पहुंच जाते हो? ऐसा नो, नहीं पहुंचते हो, टाइम लगता है ना। लेकिन क्या आप पहले दिन में 10वें लेवल पे नहीं पहुंचे तो क्या खेल खेलना बंद कर देते हो? आप उसको परफेक्ट करते रहते हो, बार बार गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर उसको बेटर करते हो, बेटर करते हो, बेटर करते हो। धीरे धीरे आप क्या होता है, आपका लेवल बेटर होने लग जाता है। आप 5वें पे जाते हो, 10वें पे जाते हो, 20वें पे। अब जिंदगी के खेल में, वीडियो गेम में क्या फर्क है? वीडियो गेम में एक एंड आ जाता है, एक एंड आ जाता है कि ये 50वां लेवल है, इसके आगे और कुछ नहीं है। जिंदगी के कोई एंड ही नहीं है, देयर इज नो एंड, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दैट परफेक्शन इज जस्ट अ वर्ड व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। नहीं तो मैं करता क्या, समझ रहे हो? नहीं तो आप करोगे क्या? अगर परफेक्ट हो गए तो अब खेल में मजा ही नहीं रह गया। जब तक जिंदा हो, जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक हम हैं इस दुनिया में, तो उस खेल को हम बेटर करते चले जा रहे हैं, और बेटर, बाहर नहीं अपने अंदर। और अगर अंदर के खेल को आपने परफेक्ट कर लिया तो आपको यह भी पता होगा मेरे को किस आदमी से कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है। मतलब अब आप अवेयर हो गए उस खेल में, अभी आप अवेयर नहीं हो, अभी आप बस अपने बारे में सोच रहे हो, आप सामने वाले के बारे में नहीं सोच रहे हो। आपको यह तक पता होगा कि इस खेल में अगर मैंने ये उल्टा बोला अपनी वाइफ को तो वहां से एक रिएक्शन आएगा जिसकी वजह से हमारी 4 दिन तक लड़ाई चलेगी। क्यों बोलना है, मत बोलो। क्यों ऐसी बातें बोलनी है जिसकी वजह से कलेश होने वाला है, या उन्होंने कुछ बोल दिया तो चुपचाप मुंह नीचे करके वहां से निकल जाओ, कितना मजा आएगा खेलने में। मतलब जब तक आपकी सांसें चल रही होंगी, बीमार हो गए, अभी क्या होगा, बीमार हो गए तो रोने लग जाओगे, या थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई, थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया तो क्या होगा, दुखी हो जाओगे। दुखी क्या होना है, खेल है, खेल का पार्ट है। बीमार हो गए, उस बीमारी को देखो। समझ पा रहे हो? क्या मुश्किल है करना, बहुत आसान है अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तो। अपनी उस बीमारी को डिटैच होकर के देखो कि मेरे हाथ में एक रिमोट है, यानी कि माइंड, और ये बॉडी है जो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, और ये बॉडी बीमार हो गई, अब मैं क्या करूं? अब उस रिमोट में क्या ऐसा कोई बटन है जिससे या तो बीमारी ठीक हो, या वो बीमारी दोबारा ना हो, या अगर बीमारी पता है कि हो गई है और इतने दिन लेगी ये ठीक होने में, और उसका उसकी कोई दवाई अभी बनी नहीं है इस पर्टिकुलर गेम के अंदर, इसको वर्ल्ड बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, तो मैं क्या करूं? चलो एक्सेप्ट कर लेता हूं, खेल है। तेरी बी हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है, 10 दिन में गायब, समझ गए? देन यू विल हैव पेशेंस आल्सो। ठीक है, खेल चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? खेल में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, क्या फर्क पड़ता है? रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो गई, क्या फर्क पड़ता है? जो अच्छी है आज कल बुरी भी हो सकती है, जो आज बुरी है कल अच्छी हो सकती है। खेल की तरह देखो, बिजनेस को खेल की तरह देखो, लाइफ को खेल की तरह देखो, अपने आप को बेटर बनाने के बारे में सोचो। ये हम नहीं सोचते हैं, बस हम ये सोचते हैं कि जो हमको चाहिए ना वो फटाफट से हमको मिल जाए, तो उस चक्कर में आप चिंदी बन जाते हो। बुरा लगेगा सुनने में, बट चिंदी बन जाते हो। सोच ही 5-10 हज़ार रुपए वाली बन जाती है। उस वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते हैं, उस वजह से हम लाइफ में दुखी रहते हैं, हम नीचे धंसते चले जाते हैं, क्योंकि फिर हमारी सारा जो सुख दुख है वो चीजों से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड है, बाहर जो चीजें उससे रिलेटेड है। सारा कंट्रोल दुनिया के हाथ में है, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं। आ रहा है ना पकड़ में? चीजें आ गई चली गई, क्या फर्क पड़ता है? खेल है, समझ गए? आज ये बॉडी है, इस बॉडी के आसपास में और बॉडीज है, कल एक बॉडी उसमें से कम हो गई, क्या फर्क पड़ता है? खेल है। ये धीरे धीरे समझना है आपको इसको, ये बॉडी कम हो गई चाहे दूसरी बॉडी में, क्या फर्क पड़ता है? खेल है। बीमार हो गई फिर ठीक हो गई, समझ रहे? कितना मतलब मजेदार है, इट्स फनी एक्चुअली। अगर आप इसको लाइट हार्टेड होकर के देख पाओ तो आपके लिए एक्चुअल में दूसरों की लाइफ तो फनी ही है, बस अपनी लाइफ ही सीरियस है। पड़ोसी के साथ कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब आपके लिए फन है। अपनी लाइफ में जरा से भी कुछ हो जाए तो ये क्या हो गया मेरे साथ में, क्या मूर्ख वाली हरकत है। बी मैच्योर, बी वाइज, समझो कि किसमें आपकी पावर्स बढ़ेंगी और किसमें घटेंगी। बिजनेस में लॉस लग गया, मान लो बहुत बड़ा लॉस लग गया, अब लग रहा है कि बेटा कल सड़क पे आने वाले, क्या हो गया? खेल है। अब देखते हैं अगली चाल क्या होगी, मुझे खुद भी नहीं पता कि अगली चाल क्या होने वाली। अरे मजा आ गया, खेल है, समझ रहे हो? यही तो खेल का मजा है, मुझे नहीं पता अगले कदम पे क्या होने वाला, यही तो एडवेंचर है। देखो एक वीडियो गेम है जिसमें जो लेवल्स आप क्रॉस कर चुके हो उसी को बार बार क्रॉस करने में मजा आता है या अगले लेवल पे जाने में मजा आता है, ये बात लोगों को समझ नहीं आती है। रियल लाइफ में जैसे जिंदगी जी रहे थे आज से 10 साल पहले, आज भी वैसे ही जी रहे हैं, रिपीट मोड, ईट स्लीप रिपीट, ईट स्लीप रिपीट, रिपीट कर रहे हैं, क्या मजा है, सेम लेवल पे। इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है सारे के सारे, उनके पास जाकर के बैठोगे खुद थके हुए हैं, आपको भी थका देंगे। लाइफ नहीं नजर आएगी, बॉटल जैसे है, समझ गए ना? बॉटल मुर्दा है ना, मुर्दा है ना, इसके अंदर जान नहीं है ना, लोगों के अंदर जान है क्या? अरे नहीं, बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके अंदर जान होगी, मतलब वो जिंदगी के हर पल में आपको एक्टिव मिलेंगे। बच्चों के साथ खेलेंगे तो खुल के खेलेंगे, काम करेंगे तो खुल के करेंगे, जो कर रहे हो खुल के करेंगे, इश्क करेंगे तो खुल के करेंगे, कमाल के आशिक होंगे वो, समझ गए? इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी चीजें जो आदमी सोच भी नहीं सकता वो सोच सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके लिए ये खेल है। लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या एक हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप परफेक्ट हो सकती है, सोच सकते हैं? सोचते ही नहीं, लोगों को सोचने में डर लगता है, हो सकता है, बहुत आसान, देख सकते हैं मेरी आंखों में, झूठ नहीं बोल, बहुत आसान है। अगर खेल समझ जाओ तो, खेल समझ आए तो, समझ गए ना? मेरा पति है, उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में, अब मुझे सारा कुछ याद आ रहा है, उसने पहले भी वो किया था, अब जिस बात पे हमारी लड़ाई हो रही है वो तो हम भूल ही गए हैं, हमारी बहस किसी और बात पे हो रही है, अब वो सारा कुछ आ गया, मैं क्या करूं, अब वो भी चीख रहा है मैं भी चीख रही हूं, समझ रहे हो? ये क्या गेम चल रहा है यार, इसको आराम से समझो, इसको खेल की तरह देखो। लग गई तो क्या हो गया, लगी हुई है लाइफ में, सबकी लगी हुई है, क्या हो गया? खेल है, खेल है जी, अभी लगी हुई है, कल बेटर हो जाएगी लाइफ, जरा तो कुछ अच्छा हो जाएगा, आज जो जॉब है वो अच्छी नहीं है तो आज बुरी हालत है, ठीक है, पार्ट ऑफ गेम है जी, पार्ट ऑफ लाइफ है, कल एक अच्छी जॉब लग जाएगी, हम एकदम से खुश होने लग जाएंगे, फिर वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी, गेम है। Be adventurous. बी रेडी टू प्ले दिस गेम ऑफ लाइफ। अगर ऐसे आप बन सको, जो बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो कहां है फियर ऑफ डेथ बताओ? इफ यू नो दैट कि ये बॉडी जिसको हम डेथ बोलते हैं, इस बॉडी को बचाने का कोई तरीका नहीं है, मरनी ही मरनी है, जानी जानी, चाहे ये बॉडी हो चाहे कोई भी बॉडी हो, जो अंदर का सॉफ्टवेयर है जो इससे कनेक्टेड है, वो जब ये बॉडी नहीं तो वो सॉफ्टवेयर कहां है? समझ गए? तो सॉफ्टवेयर भी गया, हार्डवेयर भी गया, बचा क्या? मैं बचा। ये मैं नहीं पता कि क्या बचता है क्या नहीं बचता है, और मैं हूं कौन ये नहीं पता है, तो फियर ऑफ डेथ निकल जाता है। कोई और भी अगर गया तो क्या गया? बॉडी गई ना, कुछ है जो नहीं मरता है, और वो हमको समझ आ जाए कि वो जो कुछ है इस पूरी दुनिया में एक ही चीज है और कुछ नहीं है, बाकी सब मरता है, सब मरता है जी, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मरता। कुछ ऐसा है जो पिछले हजारों सालों में, लाखों सालों में, करोड़ों सालों में, जब से दुनिया थी, है और जब तक रहेगी, वो नहीं मरा। अगर हमको समझ आ जाए कि मैं वो ही हूं, तो तब ये खेल कैसा होगा? समझ पा रहे हो? मतलब इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कैन नॉट डाई, एंड इवन इफ आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दिस बॉडी, दिस कैन नॉट सर्वाइव, दिस हैज टू डाई, इज द पार्ट ऑफ द गेम।

0: आज मैं आपको बताता हूँ हेलमेट ना पहनने के दो फायदे।
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
0: पहला फायदा, आपके ऊपर मूवी बनाई जाएगी, क्योंकि सार फूटने से आप गाज नहीं बांध सकते हैं।
2: बहुत तेज हो रहा है।
0: दूसरा फायदा, आपकी पुलिस वालों से अच्छी जान पहचान हो जाएगी, क्योंकि हर सिग्नल पर वो आपको रोक ही लेंगे।
3: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ हटके।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से.
5: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला. उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर.
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.

शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो लेकर आई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। वैसे देखिए आपसे बातें करने ना मैं डेली पहुंच जाती हूँ, सुबह 7 से 10 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, बहुत सारी बातें आपके साथ करती हूँ, एंटरटेनमेंट का डबल डोज, और साथ ही आपके शहर में यानी कि वेदर और ट्रैफिक की क्या अपडेट है ये भी आपको बताती हूँ, और क्या कुछ खास होने वाला है आज इस बारे में भी बात करेंगे। सो बातें करने के लिए बहुत कुछ है आज और जानने के लिए भी बहुत कुछ है, तो बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मिलते हैं म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ पर अब टाइम हो गया वेदर अपडेट का। अगर आज हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें 37 डिग्री जाने वाला है, इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 28 डिग्री है, लेकिन विंड स्पीड आपको 11 मिलने वाली है। इसी के साथ ही ह्यूमिडिटी की बात करें 45% है, यानी की डे सनी सनी रहने वाला। और वैसे भी ना इन दिनों मौसम ना जब चाहे तब करवट ले लेता है, कभी आंधी कभी तूफान और कभी बहुत तेज बारिश। तो इस बदलते मौसम में अपना ख्याल जरूर रखेगा, अपनों का ख्याल रखेगा, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ तो अर्ज किया है।
4: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
3: कर रहे हैं आप, सुनो तो।
4: इरशाद,
3: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
4: तुम्हारे नंबर पे?
3: हाँ जी।
4: अच्छा,
3: और उन्होंने पूछा क्या?
4: क्या पूछा?
3: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
4: क्या बात कर रहे हो?
3: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
4: अच्छा,
3: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
4: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
3: नहीं नहीं, रेंट पे है, EMI पे।
4: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
3: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
4: बाय।
3: सुनो तो, कहाँ चली?
4: बाय।

हसाता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन्नू दास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स अ लॉट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: क्या आपको ये बात पता है, जितनी कलरफुल आपकी प्लेट होगी उतने ही ज्यादा पावरफुल आप लोग बनेंगे। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जुन श्री आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्रेश वेजीज डे, यानी कि एक ऐसा दिन जो हमें ये याद दिलाता है कि फ्रेश वेजिटेबल्स सिर्फ खाने का पार्ट नहीं, हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल का ही बेस होता है। तो चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बच्चा रोज बर्गर और फ्राइज मांगता था। एक दिन उसकी नानी ने उसके प्लेट में रंग बिरंगी सब्जियां सर्व की, लाल टमाटर, हरी शिमला मिर्च और साथ ही कैरेट। और फिर नानी बोली, ये रेनबो खाने वाले सुपर हीरोज का फूड है। उस दिन से बच्चा थोड़ा थोड़ा वेजीज खाने लगा। लेकिन आपको पता है उससे हुआ क्या? जब उसने कुछ दिनों के बाद देखा ना कि उसके अंदर एक स्ट्रेंथ आ गई, वो फिट महसूस करने लगा और बहुत ज्यादा एक्टिव फील करने लगा खुद को, तो उसे वाकई लगा कि वो सुपर हीरो बन चुका है। तो देखा कितनी पावरफुल होती है वेजीज। अगर मैं बात करूँ फ्रेश वेजीज ही क्यों, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए, बिकॉज इसके अंदर होता है विटामिन और मिनरल्स जो की हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, साथ ही आपके डाइजेशन को सपोर्ट करता है और बॉडी को फ्रेश फील कराने में हेल्प करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बैलेंस्ड ईटिंग हैबिट। सो जब आप वेजीज खाते हो ना, इसका मतलब ये है कि आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी समझ रहे हो। सो माय डियर लिसनर्स, हेल्दी खाना बोरिंग नहीं होता, बस उसमें थोड़ा कलर और क्रिएटिविटी चाहिए। आज मैं ना आपके लिए एक चैलेंज लेकर आया, चैलेंज बहुत ही सिंपल है। अपनी प्लेट में एक एक्स्ट्रा फ्रेश वेजीज ऐड कीजिए, क्योंकि कभी कभी छोटी हेल्दी चॉइसेस ही बड़ा डिफरेंस बना देते हैं। और एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक जो है खास आपके लिए, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।
1: Carnival, the last ride, King.

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

है कि अकेले होना और लोनली फील करना दोनों अलग चीजें हैं। नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज आज हम बात करेंगे लोनलीनेस पे। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं लोनलीनेस अवेयरनेस वीक। यानी कि एक अवेयरनेस वीक जो हमें ये याद दिलाता है कि कनेक्शन, कन्वर्सेशन और बिलोंगिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए एक कहानी मैं आज आपको सुनाती हूँ। एक अंकल रोज पार्क जाते थे, सबको लगता था वो बस वॉक करने आते हैं। एक दिन किसी ने उनसे बात की तो पता चला वो वॉक से ज्यादा लोगों से मिलने आते हैं। कभी कभी एक सिंपल आप कैसे हैं किसी का दिन बना सकता है। सो बस अगर यही छोटे इनिशिएटिव हम अपनी लाइफ में लेते हैं सो हम किसी के स्माइल का रीजन बन सकते हैं। बिकॉज हमेशा याद रखिए, लोनली फील करना कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस है, भीड़ में भी लोनलीनेस फील हो सकती है। एंड एक छोटा सा मैसेज, एक कॉल या एक छोटी कन्वर्सेशन बहुत मैटर करती है। सो प्लीज अपने लव्ड वन से जरूर बात कीजिए अगर आपको लगता है कि आप लोनली फील कर रही हैं। फिलहाल तो मैं आज आपके लिए एक चैलेंज लेकर आई हूँ और चैलेंज ये है, आज एक दोस्त, फैमिली मेंबर या फिर अपने कलीग बिना किसी काम के मैसेज भेजिए और लिखिए बस ऐसे ही, पूछ रहा है कैसे हो, फिर देखिए क्या रिप्लाई आता है। बिकॉज कनेक्शन हमेशा बड़े जेस्चर से नहीं, कभी कभी सिर्फ सुन लेने से भी बन जाते हैं। और अगर आप खुद लोनली फील कर रहे हैं तो याद रखिए रीच आउट करना भी एक स्ट्रेंथ है। सो आज अपने इनिशिएटिव को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए और साथ ही एंजॉय कीजिए ये डे और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: हाँ तो अर्ज किया है।
3: अर्ज होता है अर्ज
2: कर रहे हैं, आप सुनो तो
3: इरशाद।

0: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
1: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
0: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
2: झटका फालूदा कर दिया यार।
0: बाय।
2: सुनो तो, कहाँ चली?
0: बाय।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

कुछ डायरेक्टर्स कहानी नहीं सुनाते, वो सफर, इमोशन और जिंदगी को स्क्रीन पर महसूस करवा देते हैं। रेडियो महारानी जी 9.6 एफएम पर एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज हम हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं बॉलीवुड के फिल्म मेकर और स्टोरी टेलर इम्तियाज अली का। अगर इम्तियाज की बात करें तो ये उन डायरेक्टर्स में से है जिनके फिल्म अक्सर सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, कैरेक्टर्स के इमोशनल जर्नी के लिए याद रखी जाती है। अगर बात करें उनके कुछ मेमोरेबल प्रोजेक्ट्स की, फिर बात आती है जब वी मेट की, एक फील गुड लव स्टोरी जो आज भी ऑडियंस की फेवरेट है। फिर बात करें लव आजकल, मॉडर्न रिलेशनशिप पर एक फ्रेश टेक, रॉकस्टार, म्यूजिक पैशन और इमोशन का पावरफुल मिक्स, और फिर थोड़ी ही दूर चले तो हाईवे, सेल्फ डिस्कवरी और फ्रीडम की कहानी। फिर बात करें तमाशा, आइडेंटिटी और ड्रीम को एक्सप्लोर करती एक कल्ट फेवरेट फिल्म। अमर सिंह चमकीला, रीसेंट प्रोजेक्ट जिसमें काफी अटेंशन ग्रैब की इम्तियाज अली ने, और अगर इनकी लाइफ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीजों के ऊपर बात करें ना तो इम्तियाज अली की फिल्म में ट्रेवल, कन्वर्सेशन और इनर जर्नी का एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है, इसी वजह से उनकी स्टोरी टेलिंग का स्टाइल अलग पहचाना जाता है। कहते हैं ना, हर सफर मैप पर नहीं होता, कुछ सफर इंसान अपने अंदर भी करता है। तो आज विश करते हैं इम्तियाज अली को एक बहुत ही खूबसूरत हैप्पी बर्थडे विश के साथ, और उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी हमें ऐसी ही यादगार कहानियां देते हैं। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए पैसो ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: सचिन ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई? हा?
2: पापा रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ।
1: यहाँ किस तरह बीच सड़क पर नाच कर
2: फील कर रहा हूँ।
1: अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: तो अर्ज किया है।
1: आहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: जब का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

करें अगर जनरेशन की तो हर जनरेशन का एक सुपरस्टार होता है और 80s 90s के लिए उनमें से एक नाम था मिथुन दा का। रेडियो महारानी 89.6 FM पर एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। आज अंजलि हूँ आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं मिथुन दा की, बिकॉज आज हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है बॉलीवुड के एक्टर, परफॉर्मर और डांसिंग आइकन का। अगर मिथुन जी की बात करें तो इन्होंने इंडिया सिनेमा में अपनी अलग आइडेंटिटी बनाई। एक ऐसे एक्टर जो सीरियस रोल भी करते थे और डांस फ्लोर भी अपने नाम कर देते थे। अगर बात करें उनकी मूवीज के तो मृग्या डेब्यू फिल्म जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। डिस्को डांसर की बात करें जिसने उन्हें ग्लोबल पॉपुलैरिटी दी। फिर बात करें प्यार झुकता नहीं, साथ ही अग्निपथ, द कश्मीर फाइल्स रीसेंट ईयर की नोटिस्ड परफॉर्मेंसेस में से एक है। और आपको पता है क्या खास बनाता है मिथुन दा को? एक टाइम पर इनका डांस स्टाइल और फैशन इतना पॉपुलर था कि हर गली में डिस्को डांस और स्टेप ट्राई किया जाता था। यानी स्टारडम तब स्पेशल बन जाता है जब हर जनरेशन आपको अपने तरीके से याद रखे। तो आज विश कहते हैं मिथुन चक्रवर्ती को ढेर सारी खुशियां, सेहत और हर दिन यादगार सफर बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
2: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
2: बाय।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

कहते हैं ना, इश्क आग का दरिया है, अगर डूब गए तो भी बैंड बजेगी और नहीं डूबे तो भी बैंड बजेगी। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते, कभी चांद तारे तोड़ कर ले जाते हैं तो कभी अपनी गर्लफ्रेंड को सनस्क्रीन गिफ्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट सामने, सोशल से यहाँ पर लेकर आ गई हूँ फिर से मैं। सो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे लवर की जिन्होंने डेट पर जाना था, अपनी स्माइल परफेक्ट करनी थी और बस इसी के चक्कर में इन्होंने अपने दांत पेंट करा लिए, वो भी किसी डेंटिस्ट से नहीं बल्कि एक पेंटर से। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर एक फनी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ एक लवर ने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने से पहले अपने दांत एक्स्ट्रा व्हाइट करवाना चाहा। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये था, टूथ व्हाइटनिंग के लिए उसने डेंटिस्ट नहीं पेंटर की हेल्प ली थी और वीडियो में उसके दांतों पर व्हाइट पेंट जैसा मटेरियल लगता भी दिखाया जा रहा है और रिजल्ट इतना ब्राइट था कि लोग हंस हंस कर कॉमेंट्स करने लगे। तो यहाँ पर अगर ये कहानी देखी जाए ना तो बहुत फनी है, लेकिन भाई का लॉजिक सिंपल था, स्माइल अच्छी होगी तो इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। लेकिन इंटरनेट ने कह दिया, कॉन्फिडेंस पेंट से नहीं स्माइल से आता है भाई। सो अगर आप भी कभी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, किसी डेट पर जा रहे हैं, तो प्लीज पैसे इकट्ठे करके अपने डेंटिस्ट के पास जाइएगा, इस तरह का शॉर्टकट मत लीजिएगा। बिकॉज ये कहानी ना एक रियलिटी चेक लेकर आई है। रियलिटी चेक ये है, मस्ती अपनी जगह, लेकिन दांतों के लिए कोई भी अननोन या पेन टाइप चीज यूज करना सेफ नहीं होता। डेंटल केयर के लिए प्रॉपर प्रोडक्ट्स और प्रोफेशनल ही बेस्ट होते हैं। सो इम्प्रेस करने के चक्कर में कभी कभी लोग इतना क्रिएटिव हो जाते हैं कि इंटरनेट कंटेंट मिल जाता है। और वैसे असली स्माइल वही होती है जो नेचुरल हो। सो जिनकी भी नेचुरल स्माइल है ना, अपने स्माइल को कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे ही बरकरार रखिए। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपके दांतों को देख आपसे ब्रेकअप कर लेती है तो करने दीजिए, बिकॉज जब ब्यूटी देखकर आपके पास आए तो वो प्यार नहीं होता। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए प्यार सुट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: इरशाद।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो।

कभी आपने वुडपीकर को देखा है? बहुत जोर जोर से अपनी चोंच पेट पर मारता, फिर भी उसे चक्कर नहीं आता और कुछ भी नहीं होता। अब सोचेगा जरूर, अगर हम दीवार पर इतनी फोर्स से अपना सर मार देते तो क्या होता। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। और ये फैक्ट जुड़ा हुआ है वुडपीकर से। वुडपीकर रोज हजारों बार पेट पर चोंच मारता है और फिर भी ठीक रहता है, कभी जाना है इसके पीछे का सीक्रेट? तो चलिए आज नेचर के इस अमेजिंग डिजाइन की बात करते हैं। वुडपीकर की स्कल स्पेशली डिजाइन होती है सो दैट कि अगर वो अपना सर बार बार पेट में मारे बिना तब भी उसे कुछ नहीं होता। इसके साथ ही वुडपीकर की जो चोंच होती है वो उसके हेड पर इम्पैक्ट को होने ही नहीं देती, यानी कि ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है। और आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग क्या है? वुडपीकर का जो ब्रेन स्कल होता है वो अंदर इस तरह से लगा हुआ होता है कि झटके का इफेक्ट तक महसूस नहीं होता, यानी कि नेक मसल्स और बॉडी स्ट्रक्चर भी शॉक को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो देखा कितना इंटरेस्टिंग है नेचर का ये अमेजिंग फैक्ट। यानी अगर बात करें इस बर्ड की, तो नेचर ने इस बर्ड को बिल्ट इन सेफ्टी सिस्टम देकर धरती पर भेजा है। यानी देखिए कितनी अमेजिंग बात है, हम लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हेलमेट पहना जाता है, लेकिन वुडपीकर के पास नेचर का परमानेंट हेलमेट होता है। सो नेचर की इंजीनियरिंग कभी कभी इंसान की टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है, और इसलिए साइंटिस्ट भी एनिमल को ऑब्जर्व करके नए डिजाइन और आइडियाज डेवलप करते हैं। सो आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने आपको बता दिया है, और भी ऐसे फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मिलता है इस म्यूजिक।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

सो बातें करते करते कब 7 से 10 बजने वाले हैं पता ही नहीं चला। और मैं यहाँ डेली आती हूँ मंडे टू फ्राइडे, आपसे बहुत सारी बातें करती हूँ, आपको बहुत सारे सोशल स्यापा से लेके एंटरटेनमेंट का डबल डोज और साथ ही आपकी सिटी में वेदर से लेके ट्रैफिक की क्या अपडेट है ये भी आपको बताती हूँ। सो फिलहाल मेरा वक्त हो गया यहाँ से जाने का, एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आज आऊंगी तभी तो कल आऊंगी ना, तो मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। आप फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM पर। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: 69.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है. कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था. कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है. पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना. मैंने कहा ओ ये सही है बेटा.
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in.

इसी गाने के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मौसम के बारे में। जहाँ बात की जाए सुबह सुबह ही मौसम बेहतरीन होता नजर आया, कुछ रिमझिम सी बरसात हुई। हालांकि पूरा दिन आज ऐसा ही, कभी बादल छाए रहने वाले हैं तो कभी धूप होने वाली है। मौसम विभाग का यही कहना है कि आज बारिश हो सकती है कल का दिन, यानी कि पूरा वीकेंड तक ऐसे ही हाल रहेंगे, कभी धूप कभी छांव कभी बारिश तो कभी आंधी। मौसम बढ़िया होते जा रहा है तो अच्छी बात है कि मौसम है भी सही। अब बारिशें अब आएंगी तो कुछ गर्मी से राहत मिलती भी नजर आएगी। वहीं बारिश की से एक ही भी कंट्रोल होते नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है हमारे शहर की हवा के लिए। बारिश के मौसम में बस हाँ एक बात का ध्यान जरूर रखें कि प्लांटेशंस जरूर करें, जिससे कि आगे आने वाले वक्त में एक वैसे हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। प्लांटेशंस करेंगे उनका प्रॉपर केयर करें, जिससे कि अच्छी खासी ग्रोथ हो पेड़ पौधों की। बाकी ऐसी चर्चा होती रहेगी, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटा है लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों। दोस्तों जैसे कि हम सब जाने हैं कि इस जून की अगर बात की जाए सेक्टर 12 खेल परिसर में 12वें योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीब 800 स्टूडेंट्स ने खिलाड़ियों और आम लोगों ने मैराथन में जी हाँ योग मैराथन में भी हिस्सा लिया जो कि कल के दिन ऑर्गेनाइज की गई थी जिससे कि योग को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है हर साल हम सब जानते हैं और योग को बढ़ावा देने को लेकर के ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है कि योगा कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डेली रूटीन लाइफ के लिए। काफ़ी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है योग। योग से हम फिट रहते हैं, फाइन रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और योग को अगर अपना लें तो बिल्कुल डॉक्टर्स की इतनी नीड हम लोगों को जो डेली कई बार हो जाती है कुछ लोगों को रेगुलर हैबिट के भी कुछ भी और डॉक्टर पे कुछ भी और डॉक्टर पे योग की इन चीज़ों को सॉर्ट आउट और सॉल्व कर देता। बाकी चर्चा होते रहेंगे उससे पहले एक और ट्रैक।

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की। यहाँ दोस्तों बात करते हैं फरीदाबाद शहर में अब ट्रैफिक रूल्स को लेकर के, जहाँ देखिए आए दिन ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक ताऊ शहर के चौक चौराहों पर सबको ट्रैफिक रूल्स को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट करते नजर आते हैं। जहाँ कभी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए गुलाब बांटे तो कभी हेलमेट्स, कभी प्यार समझाए तो कभी काटे चलान, लेकिन फिर भी शहरवासियों में कुछ लोग ऐसे जो कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। जी हाँ, देखिए जो ट्रैफिक रूल्स हैं हमारी सुरक्षा के लिए, जहाँ एक टैगलाइन की अगर बात की है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, हमारी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा, सीट बेल्ट लगा करके फोर व्हीलर्स रन करें, रॉन्ग साइड ना चलाएं, टू व्हीलर्स हेलमेट पहन के जाएं को फॉलो करें, ये सब हमारी ही सुरक्षा के लिए रूल्स बनाए गए, प्लीज़ इनका पालन करना हमारा फर्ज बनता है। बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इरशाद,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो, इस गर्मी ने कर दिया है सबका बुरा हाल।
0: बाबा,
1: अब बॉस के लिए पीपीटी के साथ लस्सी भी बनाता हूँ।
0: जैसी तेरी टूटी फटी शायरी है ना, वैसी तेरी लस्सी भी होगी। अपने घर से तो ही पी।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वार्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वार्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधारा थेरेपी, वार्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यार दोस्तों, बात कर रहे हैं हमारे यहाँ सिनेमा के गलियारे में बहुत सी ऐसी कहानियों के बारे में जो कि सिनेमा घरों में रिलीज होने को है तैयार। कुछ नई कहानियां, कुछ नई वेब सीरीज, रोमांटिक कॉमेडी, थ्रिलर, सस्पेंस और हॉरर से भरपूर। कुछ का होगा का सिल्वर स्क्रीन पर तो कुछ होंगे ओटी प्लेटफॉर्म पर। आज कहीं होने वाला है साउथ इंडस्ट्री का धमाल, तो कहीं होगा हॉलीवुड का एक्शन का धमाल। पंजाबी गानों से लेके नई मूवी रिलीजिंग के पोस्टर्स तक की कहानी, तो कहीं होंगे नई डायरेक्टोरियल डेब्यू, तो नई जोड़ियों का आगाज। ऐसी बहुत सी चर्चाएं करने वाला हूँ सिनेमा की गलियारे में, लेकिन सारी चर्चाएं करने से पहले सुना देता हूँ कुछ धमाकेदार से गाने।

0: बन्नों की सहेली से लेकर दीदी का दीवाना देवर पूरे सिनेमा की अपडेट मिलेगी ओनली इन फिल्मी फ्लेवर।
1: बंदा है ये खुद से बेगाना, अजी बंदा है ये खुद से बेगाना।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं बढ़िया कहानी है जवानी तो इश्क होना है। जहाँ बात की जाए इस कहानी के बारे में तो फर्स्ट डे 7.5 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 11 करोड़ की कलेक्शन। वहीं बंदर की अगर बात करें तो 1.45 करोड़ पर ही टिकी रही। बंदर कहानी उतना प्यार नहीं बटोर पाई लेकिन दोनों कहानी अगर टोटल कलेक्शन बात की जहाँ इस कहानी 34 करोड़ तक पहुंचती नजर आई वर्ल्ड वाइड 40 करोड़ और बंदर सिर्फ 4 करोड़ का आंकड़ा भी पार करते नजर नहीं आई। बंदर कहानी को उतना प्यार मिलता नहीं नजर आया है जवानी तो इश्क होना है जो मिट कुछ लोगों को पसंद आई कुछ को नहीं लेकिन चलिए फिर भी कुछ बढ़त हासिल करते नजर आया है जवानी तो इश्क होना ही है। बाकी इन दोनों कहानी में आप कौन सी कहानी को ज्यादा फेवरेट या बेस्ट कहेंगे बताइए जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9654896896 पर। बाकी ऐसी रिलेटेड बातें होती रहेंगी उससे पहले कॉन्टैक्ट।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटा हूँ लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यह बात करते हैं एसएस राजामौली साहब की वाराणसी, जहां राइटर विजेंद्र प्रसाद ने कन्फर्म किया कि फिल्म में भगवान राम और कुंभकर्ण के बीच लगभग 30 मिनट का वॉर सीक्वेंस भी दिखाया जाएगा। उनके मुताबिक यह सीन रामायण से इंस्पायर्ड एक मेजर हाईलाइट होगा और ऑडियंस को काफी इम्पैक्टफुल लगेगा। विजेंद्र प्रसाद ने इसे एक मैसिव बैटल सीक्वेंस बताया, ना कि कोई छोटा विजुअल मोमेंट। कहा जा रहा है कि ट्रेलर में भगवान राम, कुंभकर्ण और हनुमान जी के रिलेटेड विजुअल्स का भी रेफरेंस दिख चुका। फिल्म पहले से काफी बस क्रिएट कर चुके हैं और ये 2027 की सबसे बड़ी अंजियम फिल्म्स में से एक मानी जा रही है। मनीष बाबू को भगवान राम के रोल से जोड़ा जा रहा है, जबकि बैटल सीक्वेंस को फिल्म का सेंटर पीस बताया जा रहा है। देखते हैं अब वाराणसी में ये कितना बेहतरीन तरीके से कहानी को लेकर के आ रहे हैं। मेकर्स रहेगा इंतजार, बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगी। उससे पहले एक और ट्रैक।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे तो हेलो सुन के जाओ।
3: Your voice, I am singing song.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहां बात करते हैं आयुष्मान खुराना और तापसी पन्नू जैसे एक्टर्स ने एक्टिंग के लिए अपनी करियर्स को छोड़ा था। जी हां, एक चर्चा जो आयुष्मान ने एंटरटेनर मीडिया से बॉलीवुड में एंट्री ली जबकि तापसी ने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से फिल्म इंडस्ट्री में आकर अपनी पहचान बनाई। बात की जाए इसी तरह एग्जांपल्स जॉन अब्राहम, रणवीर सिंह और विकी कौशल जैसे नाम्स भी आते हैं जिन्होंने अलग प्रोफेशन पाथ से फिल्म तक का सफर तय किया। स्टोरी उन लोगों के लिए मोटिवेटिंग है जो करियर चेंज या पैशन ड्रिवन स्विच के बारे में सोचते हैं लेकिन कहीं ना कहीं बीच में रह जाते हैं। इन एक्टर्स की जर्नी इनसे दिखाती है कि नॉन फिल्म बैकग्राउंड से आकर भी स्ट्रॉन्ग प्लेस बनाना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। तो बिल्कुल, अगर आप भी कभी सोचते हैं यार मुझे अपने पैशन की ओर जाना है लेकिन पता नहीं आगे करियर सेट होगा या नहीं, ये मत सोचिए, बस जुनून रखिए तो कंप्लीट तो जरूर होगा। बाकी इसमें चर्चा होते रहेगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है. होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं.
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से. हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है.
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक. हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर.
7: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था. पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए. सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए. ऐसा लगेगा मन

0: मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटा है लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं दोस्ताना के सीक्वल को लेकर के, जहाँ पर डायरेक्टर अद्वैत चंद ने प्रोजेक्ट से एग्जिट कर लिया है। जी हाँ, कहा जा रहा है क्रिएटिव डिफरेंसेस के चक्कर में ऐसा कुछ होता नजर आया। बात करें कि अद्वैत चंदन ने लगभग 7 months प्रोजेक्ट पर काम किया, लेकिन क्रिएटिव विजन प्रोड्यूसर से कुछ प्लानिंग मैच नहीं, इसलिए खुद को अलग करते नजर आए। दोस्तानों टू पहले ही कास्ट चेंज और डिलेज की वजह से ट्रबल में थी और डायरेक्टर का एग्जिट प्रोजेक्ट की अनसर्टेनिटी और बढ़ा देता है। देखिए, मेकर्स की तरफ से भी कोई ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया गया था क्या चल रहा है क्या नहीं। अब डायरेक्टर के एग्जिट लेने के बाद अब क्या होता है, सभी फैंस निगाहें टिके बैठे हैं कि यार कहानी लाई भी जाएगी या फिर अब बीच में ही रह जाने वाली है। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, बाकी ऐसी अभी चर्चा करता रहूंगा। उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: डांस बसंती।
1: फिल्मी ट्विस्ट से लेकर नए सॉन्ग की लिस्ट तक सुनते रहिए फिल्मी फ्लेवर रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके पर।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं।

लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लिप। यहाँ बात करते हैं लाहौर 1947 का टाइटल, जहाँ बदलते हुए नजर आया क्योंकि जहाँ बंटवारा 1947 को कर दिया गया। मेकर्स ने बात की जाए फादर्स डे पर सनी देओल और करण देओल वाली स्पेशल प्रोमो रिलीज करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। फिल्म का नया टाइटल बात करें सेंसिटिविटी से बचने के लिए चूज किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। लाहौर 1947 से शिफ्ट किया गया बंटवारा पे स्ट्राइकर लाया गया है। अब देखते हैं कि ये जो रिलीजिंग सोची जा रही है स्पेशल प्रोमो फादर्स डे के दौरान, वो कितना बेहतरीन लेकर के आएंगे मेकर्स। कोई बात नहीं, 21 जून आने ही वाली है, अब इंतजार है फैंस को 21 जून का, जहां सनी और करण देओल को सेंटर में रखते हुए जो स्पेशल प्रोमो स्क्रीनिंग की जा रही है, रहेगा इंतजार। बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जो बेहतरीन कमाल भी करेंगे और धमाल भी हो जाएंगे। कॉकटेल 2 जो कि आने वाले वीकेंड में रिलीज होने वाली है, और इसी के साथ कुछ वक्त बाद वेलकम टू द जंगल भी कमाल करेगी। भारत की छह ये वो कहानियां जो कि अभी आने वाले वक्त में धमाल मचाने वाली हैं, ऐसा चर्चाएं चल रही हैं। आप देखिए कौन सी कहानी पहले पायदान पर होगी, कौन सी बाद में, ये देखने वाली बात होगी। वेलकम टू द जंगल भी बहुत लंबे अरसे से बनाई जा रही है, काफ़ी लंबे स्क्रिप्टेड कहानी जब बहुत ही बड़ी स्टार कास्ट भी होती है। ये लंबी स्टार कास्ट ज़्यादा प्यार बटोरेगी या फिर कॉकटेल का सीक्वल जिसको बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है विद न्यू स्टार कास्ट। इंतजार रहेगा दोनों कहानियों की रिलीजिंग का, बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगी। उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: तू पीआर है, इस खातिर तेरा तक करया प्यार कोन्या। और सारी दुनिया में जागी टोली है, तने जाट बरगा मिलेगा यार कोन्या। और मैडम है, दिन में शिफ्टा रात ने स्टूडियो में गावे, मने तेरा जैसा देखा स्टार कोन्या, तेरा जैसा देखा स्टार कोन्या।
1: केवाईसी अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और एटीएम दोनों ही बंद हो जाएगा।
2: बट मेरा केवाईसी तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
3: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
7: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: मेरे लिए, मेरे लिए।
1: इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं फिल्म फ्लेवर में, वक्त हो चला है सिनेमा के कैलेंडर का और आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं बॉलीवुड के एक ऐसे सुपरस्टार जिन्होंने एक पूरी जनरेशन को डांस करना सिखाया, स्टाइल दिया और स्क्रीन पर अपनी अलग ही पहचान बनाई। 80 के दौर का याद कीजिए, डिस्को लाइट्स, फ्लैशी कॉस्ट्यूम्स और एक ऐसा हीरो जिसके डांस मूव्स देखकर यंगस्टर्स दीवाने हो जाते हैं। ये वो एक्टर थे जिन्होंने सुपरस्टार होने की डेफिनेशन को ही बदल दिया। बात करूंगा डिस्को किंग के बारे में। डिस्को किंग से आप समझ गए होंगे कौन है स्टार, लेकिन जो समझ गए तो अच्छी बात, जो नहीं समझे थोड़ा सा इंतजार कीजिए गानों के बाद, फिर बताऊंगा आपको कौन है ये स्टार जिनका आज बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इससे पहले खूबसूरत ट्रैक

हिट्स या अनरिलीज्ड जेम्स। फिल्मी फ्लेवर में आरजे मोनिक आपको सुनाएंगे हर फिल्मी किस्सा ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटा हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से जहाँ बिल्कुल बेट हो रहा मिथुन चक्रवर्ती जी का। बहुत कम लोग जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती का सफर बॉलीवुड के सबसे इंस्पायरिंग सफर में से एक माना जाता है। मिथुन ने फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग की स्टडीज की और फिर सपनों के शहर मुंबई का रुख किया। उनकी डेब्यू फिल्म थी मृग गया थी और कमाल की बात यह है कि पहली ही फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। ये अचीवमेंट बहुत कम एक्टर्स को नसीब होता है लेकिन असली स्टारडम अभी आना बाकी है। 1982 में एक फिल्म आई और उसने मिथुन को इंटरनेशनल सेंसेशन बना दिया। डिस्को डांसर जिमी का करेक्टर और आई एम अ डिस्को डांसर जेवी जेवी आजा जैसे गाने सिर्फ इंडिया ही नहीं रशिया और कई दूसरी कंट्रीज में भी सुपरहिट हुए। इसके अलावा प्यार झुकता नहीं, डांस डांस, अग्निपंथ, तहदर कथा जैसे प्रोजेक्ट्स ने उन्हें मास ऑडियंस का फेवरेट बना दिया। बाकी ऐसी और भी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: और भैया क्या हाल चाल। हम अपने घर की फर्श चाहे जितनी अच्छी क्यों ना कर लें भैया, गाड़ी चलाना तो सड़कों पर ही है, सड़क पर तो गड्ढे ही गड्ढे हैं, उसका क्या।
1: अरे उसके लिए तो नगर निगम है ना।
0: कहाँ है, सालों से यही सुनते आ रहे हैं। ऐसा लगता है सड़क पर गड्ढे नहीं, गड्ढों के बीच में थोड़ी सी सड़क है। किसी भी गली में जाओ, लोग दिखे ना दिखे, जगह जगह पर कचरे का ढेर जरूर दिख जाता है। और अगर रात के अंधेरे में कहीं बाहर निकल जाओ तो घर से टॉर्च लेकर जरूर जाना भैया, क्योंकि स्ट्रीट लैंप तो ऐसे गायब हो गई हैं, जैसे दुनिया से डायनासोर। अब ऐसा नहीं चलेगा भैया, अब ब्यूटी पार्लर जाकर मेकअप हो ना हो, पर नगर निगम का मेकओवर होना बहुत जरूरी है।
2: तो आज से अपने अधिकारों का करेंगे सही इस्तेमाल, चुनेंगे वही जो होगा नगर के लिए सही।

0: भेजा सरकार।
1: थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ अब हम बात करते हैं सिनेमा के कैलेंडर में मिथुन साहब की। मिथुन चक्रवर्ती उन चुनिंदा एक्टर्स में से हैं जिन्होंने हिंदी और बंगाली सिनेमा दोनों में नेशनल अवार्ड्स जीते। उन्होंने डांस बेस्ड हीरो को मेन स्ट्रीम बॉलीवुड का ट्रेंड बना दिया। उनके डांस मूव्स और स्टाइल को आज भी 80 के दौर की पहचान माना जाता है। लेकिन मिथुन सिर्फ डांस स्टार नहीं थे, उन्होंने सीरियस इमोशनल और कैरेक्टर ड्रिवन रोल्स में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। ऐसे दोस्तों और भी चर्चाएं चलती रहेंगी सिनेमा के गलियारे में, लेकिन आज नहीं, उससे मुलाकात होगी कल के दिन सेम टाइम सेम जगह। करमो ढेरों बातें, तब तक सुनते रहें रेडियो महाराज।

मुराया मारे गिल घुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले पकट सिरा कूड़े घुमुराया मारे गिल घुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले पकट सिरा कूड़े।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम बाजू।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

एक ऐसा प्लेयर जो सालों तक डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स पे रन्स बनाता रहा, आईपीएल में मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देता रहा, लेकिन टीम इंडिया का दरवाजा उसके लिए खुलता ही नहीं था। कई लोग तो ये मान चुके थे कि उसका इंटरनेशनल करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और ये कहानी है सूर्य कुमार यादव की। 14 सितंबर 1990 मुंबई में जन्मे सूर्य कुमार यादव यानी स्काई। बचपन से ही क्रिकेट के दीवाने थे। उनके फादर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और फैमिली चाहती थी कि पढ़ाई भी अच्छी चले, लेकिन सूर्य का दिल सिर्फ क्रिकेट में लगता था। मुंबई जैसे शहर में क्रिकेटर बनना आसान नहीं होता। हर गली हर मैदान में टैलेंट भरा पड़ा होता है, लेकिन सूर्य के पास एक चीज अलग थी, उनके शॉट्स। जब दूसरे प्लेयर्स टेक्स्ट बुक क्रिकेट खेलते थे, सूर्य फील्ड के एरियाज में शॉट्स लगाते थे जहां कोई सोचता भी नहीं था। डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने मुंबई के लिए लगातार परफॉर्म किया। रणजी ट्रॉफी हो या विजय हजारे ट्रॉफी, सूर्य हर फॉर्मेट में रन्स बना रहे थे। लेकिन जब टीम इंडिया का सिलेक्शन की बात आती, उनका नाम कहीं पीछे रह जाता। हर साल नए प्लेयर्स डेब्यू करते, हर साल सूर्य वेट करता और हर साल उन्हें डिसअपॉइंटमेंट मिलती। कई प्लेयर्स स्टेज पर क्रिकेट छोड़ देते हैं, कई प्लेयर फ्रस्ट्रेशन में अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, लेकिन सूर्य ने कभी बिलीव करना नहीं छोड़ा। उन्हें लगता था कि अगर परफॉर्मेंस उनके कंट्रोल में है तो वही करना चाहिए। और फिर आया आईपीएल, जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कैसे बने वो आईपीएल के सुपरस्टार, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ।

0: कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, इसलिए गधा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: सोचा था कॉर्पोरेट ज्वाइन करके आराम की नौकरी होगी, लेकिन दिन में 10 बार तो मीटिंग हो जाती है। मैनेजर को भी काम लंच के 10 मिनट पहले याद आता है। लीव मांगने पर वाई इंटरव्यू शुरू हो जाता है। काम मैं करता हूँ, क्रेडिट मैनेजर ले जाता है, और ये बात जब मैं घर वालों को बता दूँ तो वो मुझे गधा बोल देते हैं।
2: ठीक कह रहे तुरेंद्र, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कितना भी कर ले, रहेगा तो गधा ही।

0: कभी कभी दुनिया आपकी वैल्यू तब समझती है जब आपके पास इग्नोर करने का कोई रीजन नहीं बचता, और आईपीएल में सूर्य कुमार यादव ने एग्जैक्टली वही किया। मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए सूर्य धीरे धीरे टीम के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से एक बन गए। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव की बैटिंग स्टाइल बिल्कुल अलग थी। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस हो या डेथ ओवर्स, सूर्य हर सिचुएशन में रन बना सकते थे। उनके शॉट्स देखकर कमेंटेटर्स भी हैरान रह जाते थे। फाइन लेग के ऊपर स्कूप, थर्ड मैन के ऊपर रैंप, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर लॉफ्टेड ड्राइव, ऐसा लगता था जैसे उनके पास 360 डिग्री बैटिंग का रिमोट कंट्रोल हो। आईपीएल 2018, 2019 और 2020 में उन्होंने लगातार मैच विनिंग इनिंग्स खेली। फैंस का एक ही सवाल था, आखिर स्काई को टीम इंडिया में चांस कब मिलेगा। लेकिन सिलेक्टर्स का डिसीजन नहीं बदला, सूर्य लगातार परफॉर्म करते रहे। और फिर एक मोमेंट आया जिसने इंटरनेट हिला दिया। आईपीएल के एक मैच में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ विनिंग इनिंग्स खेली थी। मैच के बाद कैमरा विराट कोहली और सूर्य कुमार के फेस ऑफ पर गया। कोई वर्ड्स नहीं बोले गए, लेकिन पूरा क्रिकेट वर्ल्ड समझ गया कि सूर्य एक मैसेज दे रहे हैं, मैं रेडी हूँ। और शायद सिलेक्टर्स ने भी ये मैसेज सुन लिया था, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद सूर्य का इंतजार खत्म होने वाला था। और कैसे, किस उम्र में उनका डेब्यू हुआ, करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।

0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: पड़ोसन हूँ इसलिए जासूस हूँ।
1: सुनो पम्मी बहन जी।
2: बोलो सिम्मी बहन जी।
1: तुम्हें पता है गुड्डू की लड़की चुन्नू के लड़के के साथ भाग गई, और ये खबर सबको सबसे पहले मैंने ही बताई थी। और पता है एक दिन स्वीटी के घर चार लड़के आए। हाय, वो तो बाद में पता चला कि वो पेंटर थे। और पता है टिल्लो का पति रोज पीकर आता है, और जब ये बात मैं सबको बताने जाती हूँ तो लोग मेरे को जासूस बताते हैं। ले अब ये भी कोई बात हुई भला।
2: सही कह रहे हो पैंट जी, जो जानकारी रखते हैं ना उनको सब जासूस ही कहते हैं।

जिस उम्र में कई क्रिकेटर्स अपने करियर के पीक पर होते हैं, उस उम्र में सूर्य कुमार यादव अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले थे। साल था 2021। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव की। 31 साल के सूर्य कुमार यादव को फाइनली टीम इंडिया में जगह मिली। ये सिलेक्शन सिर्फ सिलेक्शन नहीं था, ये सालों की मेहनत का रिवॉर्ड था। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में उन्हें डेब्यू कैप मिली, और फिर आया वो मोमेंट जो हर इंडियन फैन को याद है। जोफ्रा आर्चर जैसे फास्ट बॉलर के सामने सूर्या क्रीज पर आए, पहली बॉल और सूर्या ने उसे सीधा सिक्स के लिए भेज दिया। पूरा स्टेडियम झूम उठा। ये सिर्फ एक शॉट नहीं था, ये अनाउंसमेंट था। अनाउंसमेंट कि स्काई इंटरनेशनल क्रिकेट में आ चुका है। उसके बाद सूर्या ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। हर सीरीज में रन्स, हर मैच में इम्पैक्ट, और हर इनिंग्स के साथ फैंस का प्यार बढ़ता गया। अब दुनिया के बॉलर्स उनके शॉट्स को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि स्काई के शॉट्स ट्रेडिशनल क्रिकेट लॉजिक फॉलो ही नहीं करते थे, और इसी वजह से वो दुनिया के सबसे डेंजरस T20I बैट्समैन बनने वाले थे। और कैसे मिला उन्हें मिस्टर 360 का टाइटल, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: मम्मा मम्मा आपको गर्मी लगती है क्या?
1: बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात है? सुबह से 3 बार नहा चुकी हूँ, फिर भी वही हाल है मेरा।
0: तो फिर मम्मा बाहर जो डॉगी है और जो छत पे जो बर्ड्स आते हैं उन्हें भी तो लगती होगी ना मम्मा?
1: शायद मैंने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया, पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है मुझसे?
0: मम्मा जब आप इतनी गर्मी से परेशान हो तो सोचो, वो बेजुबान तो बता भी नहीं पाते उन्हें कितनी गर्मी से दिक्कत होती है, तो मम्मा हम उनके लिए पानी तो रख सकते हैं ना?
2: कभी कभी इंसानियत की सबसे खूबसूरत बात हमें किसी किताब से नहीं, एक छोटे बच्चे की मासूमियत से सीखने को मिलती है। इस तपती गर्मी में एक छोटा सा बोल पानी का किसी बेजुबान की प्यास ही नहीं, उसकी जान भी बचा सकता है। तो इस गर्मी घर के बाहर जानवरों के लिए और बेल्कनी या टेरिस में बर्ड्स के लिए थोड़ा सा पानी जरूर रखिए।

एबी डिविलियर्स को मिस्टर 360 कहा जाता था, लेकिन कुछ ही सालों में क्रिकेट वर्ल्ड को इंडिया का अपना मिस्टर 360 डिग्री मिल गया। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं मिस्टर 360 डिग्री ऑफ इंडिया यानी सूर्य कुमार यादव की। साल 2022 और साल 2023 स्काई के नाम रहे। हर सीरीज में एक्सप्लोसिव बैटिंग, हर टूर्नामेंट में मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस। बॉलर यॉर्कर डाले तो रैंप शॉट, बॉलर शॉर्ट बॉल डाले तो अपर कट, फुल बॉल डाले तो स्कूप। ऐसा लगता था जैसे फील्ड प्लेसमेंट का कंसेप्ट ही खत्म हो गया हो। आईसीसी T20 रैंकिंग में सूर्या दुनिया के नंबर वन बैट्समैन बन गए। ये अचीवमेंट किसी इंडियन बैटर ने बहुत कम बार हासिल की थी। फैंस उनकी बैटिंग को एंटरटेनमेंट नहीं, मैजिक कहने लगे। कई एक्सपर्ट्स ने उन्हें T20 क्रिकेट का सबसे इनोवेटिव बैट्समैन बताया। लेकिन फिर एक और चैलेंज आया, ODI वर्ल्ड कप 2023, जहां सूर्या अपना बेस्ट वर्जन नहीं दिखा पाए। क्रिटिसिज्म फिर से शुरू हो गया। लेकिन सूर्या की कहानी हमेशा एक बात सिखाती है, वो प्रेशर से भागते नहीं है, वो प्रेशर में और डेंजरस बन जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ दुनिया को जल्दी मिलने वाला था, और वो था वर्ल्ड कप फाइनल का वो कैच। कौन सा था वो कैच, शायद आप लोग जानते होंगे, मगर करेंगे इसके बारे में और भी बात, लेकिन थोड़ी देर बाद। फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान।

ओए मुन्ना, मैं तुझे समझा रहा हूँ। जब भी घर से निकले तो पानी की बोतल साथ लेके निकलियो। अगर तू बिना पानी की बोतल लिए निकला तो तोड़ दूंगा, होड़ दूंगा। ध्यान रखियो मुन्ना।

क्रिकेट में हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कैचेस विन मैचेस। कभी कभी एक कैच पूरे टूर्नामेंट की डायरेक्शन बदल देता है, और 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में सूर्य कुमार यादव ने ऐसा ही एक कैच पकड़ा था। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव की। जून 2024, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप फाइनल। मैच लास्ट ओवर्स में पहुंच चुका था, साउथ अफ्रीका जीत के बहुत करीब थी, हर इंडियन फैन की हार्ट बीट बढ़ चुकी थी। तब डेविड मिलर ने एक बड़ा शॉट खेला, बॉल बाउंड्री के पार जाती हुई लग रही थी, और उसी वक्त बाउंड्री लाइन के पास खड़े थे सूर्य कुमार यादव। उन्होंने बॉल को कैच किया, बैलेंस लूज हुआ, बॉल को हवा में उछाला, बाउंड्री के बाहर जाने से पहले दोबारा अंदर आकर कैच कंप्लीट कर दिया। पूरा स्टेडियम शॉक में था, कमेंटेटर्स चीख पड़े, और कुछ ही देर बाद इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया। ये कैच क्रिकेट हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट कैचेस में काउंट किया गया। आज सूर्य कुमार यादव की स्टोरी सिर्फ रन्स की स्टोरी नहीं है, ये पेशेंस की स्टोरी है। ये उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट लेट मिलता है, क्योंकि स्काई ने प्रूव किया अगर टैलेंट के साथ पेशेंस हो तो चाहे दुनिया कितनी भी देर लगाए आपका वक्त जरूर आता है, और जब वो वक्त आता है तो पूरी दुनिया आपको सूर्य कुमार यादव के नाम से जानती है। तो ये थी कहानी सूर्य कुमार यादव यानी स्काई की। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें मैसेज करके जरूर बताइएगा। नंबर है हमारा 9654896896। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आप सभी से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड। और आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सक्सेस स्टोरी सुनना नहीं चाहते बल्कि उनके पीछे की कहानी भी जानना चाहते हैं। आप सोचिए, जब आप सुबह अपनी चाय बनाते हो, मिल्क का ग्लास निकालते हो, क्या कभी सोचा है कि ये दूध का ग्लास आपके टेबल तक कैसे आया? दूध सिर्फ दूध नहीं है, ये सिस्टम है, ये एक नेटवर्क है, लाखों लोगों की मेहनत और डेडिकेशन का नतीजा है। और इसी सिस्टम को बनाने के लिए एक इंसान ने पूरी लाइफ को डेडिकेट कर दिया। पर शुरू शुरू में वो इंसान सिर्फ एक शहरी लड़का था, एक फॉरेन डिग्री के साथ, जिसको लाइफ ने एक छोटे से गांव में भेज दिया। इमेजिन कीजिए, शहर का लड़का कंफर्टेबल लाइफ का सपना लेकर एंड सडनली एक गांव में आ जाता है जहां रोड्स खराब, कम्युनिकेशन लिमिटेड और फैसिलिटीज ऑलमोस्ट जीरो, और रहने के लिए एक छोटा सा इनको गैराज मिलता है। शुरू में फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, डाउट, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? सोचा, काश मैं शहर में होता, बड़ी कंपनी में होता। लेकिन जब वो गांव के किसानों को देखने लगता है, उनकी रूटीन लाइफ को समझने लगता है और उनका स्ट्रगल सुनता है, तब एक चीज क्लियर होती है। प्रॉब्लम दूध का नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम का है। ये आदमी समझता है कि अगर सिस्टम को सही डायरेक्शन में लाएंगे तो पूरा देश चेंज हो सकता है। और वहीं से शुरू होती है ये कहानी, जो सिर्फ बिजनेस स्टोरी नहीं बल्कि सोशल रेवोल्यूशन की कहानी बन जाती है। मैं अक्सर स्टार्टअप्स और बिजनेस की बात करती हूँ, तो आज मैं आपसे सबसे पहले पूछती हूँ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना टर्नओवर है, कितनी फंडिंग मिली? पर ये कहानी नंबर्स के पीछे की कहानी नहीं है, ये कहानी है इंटेंट के पीछे, पर्पस की कहानी। और एक ऐसे आदमी के डिसीजन के पीछे जिसने पूरे देश का ब्रेकफास्ट चेंज कर दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये इंसान खुद को हीरो नहीं मानता, वो बस गलत के खिलाफ खड़ा होता है। सोचिए, अगर आप एक छोटी सी कम्युनिटी में जाते हो और वहाँ लोग रोज 4 बजे सुबह उठते हैं, मेहनत करते हैं और फिर भी उन्हें फेयर प्राइस नहीं मिलता, आप क्या कहेंगे? तो इसी इंसान ने डिसाइड किया वो सिस्टम को चेंज करेगा, और वही सिस्टम चेंज करने का थॉट एक मूवमेंट में बदल गया। गांव का गैराज, सिंपल टूल्स और डिटर्मिनेशन, यही थी इसकी फाउंडेशन, जो आगे चलकर नेशनल रिवॉल्यूशन बनने वाली थी। तो कहानी आपको मैं बताऊंगी, लेकिन गाना सुनते हैं। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

वंस अगेन वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम. कुछ हटके शो है बिजनेस अनप्लग्ड. और मैंने आपको एक सवाल पर छोड़ दिया था. एक शहरी लड़का फॉरेन डिग्री के साथ गांव के एक डेयरी गैराज में रह रहा था. फ्रस्ट्रेशन थी, कंफ्यूजन भी थी, लेकिन उस कंफ्यूजन के अंदर कहीं ना कहीं एक आइडिया जन्म ले रहा था. तो आज इस कहानी के नाम को आपको बताने का टाइम आ गया है. लेकिन सीधा नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक सोच है. सोचिए इंडिया 1940 से 50 का दौर. देश नया नया आजाद हुआ है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट जीरो, और मिल्क सिर्फ एक लग्जरी माना जाता था. गांव का किसान तो जैसे दूध उगा रहा था, लेकिन फायदा कोई और उठा रहा था. मिडिल मैन, कॉन्ट्रैक्टर्स, प्राइवेट डेयरी सब अपना हिस्सा लेते थे, और जो सबसे ज्यादा मेहनत करता था वो सबसे कम कमाता था. और यहीं से एंट्री होती है एक आदमी की, जो सिर्फ इंजीनियर नहीं था, वो सिस्टम इंजीनियर बन गया. इस आदमी का मानना था प्रॉफिट पहला नहीं है, पहले पावर फार्मर्स के हाथ में होनी चाहिए. और अब वक्त है इस कहानी के हीरो के नाम को बताने का. डॉक्टर वर्गीस कुरियन. हाँ, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें आज पूरी दुनिया व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर के नाम से जानती है. पर जब ये कहानी शुरू हुई थी तब ना कोई रेवोल्यूशन था, ना कोई ब्रांड, ना कोई सक्सेस टैग. सिर्फ एक जॉब थी जो उन्हें पसंद नहीं थी, सिर्फ एक गाँव था जो उन्हें अपना नहीं मानता था, और सिर्फ एक दिल था जो इनजस्टिस देखकर चुप नहीं रह सकता था. डॉक्टर कुरियन अमेरिका से मास्टर्स करके इंडिया लौटे थे. सपना था बिग सिटी, बिग कंपनी, बिग लाइफ. लेकिन स्कॉलरशिप के कॉन्ट्रैक्ट ने उन्हें गुजरात के आनंद गांव भेज दिया, एक छोटा सा डस्टी टाउन, जहां ना रहने की जगह थी, ना सोशल लाइफ, ना कंफर्ट. यहां तक कि इन्हें घर भी नहीं मिला. इसीलिए डॉक्टर कुरियन डेयरी के गैराज में रहते थे, और यहीं से इस गैराज में इंडिया के सबसे बड़े मोमेंट्स की नींव पड़ने वाली थी. डॉक्टर कुरियन डेयरीज की पुरानी मशीन से लड़ रहे थे, लेकिन असली फाइट मशीन से नहीं थी, फाइट थी सिस्टम से. इन्होंने देखा किस तरह किसान अपना दूध बेचते हैं और उसका कंट्रोल उनके हाथ में नहीं रहता. इन्होंने देखा किस तरह किसान मजबूर है और मजबूरियां बिजनेस मॉडल बन चुकी हैं. और यहीं डॉक्टर कुरियन ने एक डिसीजन लिया, लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन. इन्होंने सोचा अगर मिल्क पे फार्मर्स का कंट्रोल होगा तो उनकी जिंदगी बदलेगी. और यहीं से एक नया आइडिया जन्म लेता है, कोऑपरेटिव मॉडल. और इस आइडिया को सपोर्ट मिला एक और विजनरी से, त्रिभुवन दास पटेल. पटेल और कुरियन, एक लीडर, एक इंजीनियर, दोनों का गोल एक ही था, फार्मर्स फर्स्ट. और फिर एक ब्रांड का जन्म हुआ. इस ब्रांड का नाम रखा गया अमूल. अमूल जो अमूल्य से आया, यानी कि प्राइसलेस. पर सच कहूँ अमूल सिर्फ ब्रांड नहीं है, अमूल एक मैसेज है. मैसेज ये है कि अगर क्वालिटी अच्छी हो और प्राइस फेयर हो तो सिस्टम कभी फेल नहीं होता. डॉक्टर कुरियन के लिए अमूल का मतलब प्रॉफिट नहीं था, अमूल का मतलब था ओनरशिप. किसान का अपना ब्रांड, किसान का अपना डिसीजन, किसान की अपनी आवाज. और यहीं से जो शुरू हुआ वो सिर्फ डेयरी बिजनेस नहीं था, वो एक मूवमेंट था. एक मूवमेंट जो अगले कुछ सालों में इंडिया को वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बनाने वाला था. लेकिन ये जर्नी स्मूथ नहीं थी, अपोजिशन थी, इंटरनेशनल प्रेशर था, लोकल पॉलिटिक्स थी, और सबसे बड़ी बात, लोगों का भरोसा नहीं था कि गांव के किसान सिस्टम चला सकते हैं.

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: आज है साइबर सिक्योरिटी एंड रोड सिक्योरिटी का तंदूरी तड़का, जो एप्स आपके फोन से लोकेशन, कॉन्टैक्ट, फोटोस, अपने एम्बिशन सब मांगे, उन्हें बाय बाय बोलकर विदाई दे दो। और ईमेल्स लाइक क्लिक टू विन प्राइज और अकाउंट इज इन डेंजर, योर पार्सल इज अराइविंग, अरे मेरे भाई मैंने मैथ्स की किताब तक नहीं मंगाई, कौन सा पार्सल ला रहा है।

उसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड, मैं हूँ गीत और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में, जिन्होंने एक ब्रांड बनाया जिसका नाम रखा गया अमूल। तो आज हम उनके टाइटल्स, उनके अचीवमेंट्स और उनके अवार्ड से पहले जाएंगे। तो आज हम मिलेंगे एक बच्चे से जो केरला के एक छोटे से नॉर्मल गांव में पैदा हुआ, जिसके माता पिता ने शायद कभी नहीं सोचा कि उनका बेटा पूरे देश का फ्यूचर डिजाइन करेगा। 26 नवंबर 1921 केरला, एक मिडिल क्लास क्रिश्चियन फैमिली, नाम रखा गया वर्गीस, ग्रीक मीनिंग होता है फार्मर। आयरनी देखिए, नाम फार्मर और डेस्टिनी भी वही। वर्गीस कुरियन का बचपन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। स्कूल, पढ़ाई, डिसिप्लिन, इनके फादर सिविल सर्वेंट थे, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्ड, एजुकेशन को सबसे ऊपर रखने वाले, और माँ क्वाइट स्ट्रेंथ और जो बोलती कम थी पर वैल्यूज बहुत ज्यादा देती थी। ये वही वैल्यूज थी जो बाद में कुरियन के डिसीजंस में देखी गई। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एथिक्स। कुरियन पढ़ने में अच्छे थे, साइंस उनका कंफर्ट जोन था, लॉजिकल माइंड और सवाल पूछने की आदत। इन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी और फिर मिला एक गोल्डन चांस, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अमेरिका जाने का, मास्टर्स इन डेयरी इंजीनियरिंग। इमेजिन कीजिए 1920s से 1930s का इंडिया और एक इंडियन लड़का फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। अमेरिका में मशीन्स मॉडर्न थी, सिस्टम स्मूथ था और लाइफ कंफर्टेबल। यही कुरियन ने सोचा, डिग्री कंप्लीट करते हैं, मैं किसी बड़ी कंपनी में जॉब करूंगा, बिग सिटी बिग लाइफ। लेकिन लाइफ ने यहाँ पर एक क्लॉज ऐड कर दिया। स्कॉलरशिप की एक कंडीशन थी, इंडिया वापस जाकर गवर्नमेंट सर्विस देनी होगी, और वही कंडीशन कुरियन को आनंद गुजरात ले आई। अब यहाँ से रियल स्ट्रगल शुरू हो जाता है। कुरियन के लिए आनंद कल्चर शॉक था, शहर का एजुकेटेड लड़का, गांव की मिट्टी, बैड रोड, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज और आउटडेटेड मशीन्स, और सबसे बड़ी बात वो अकेला था, नॉन वेजिटेरियन क्रिश्चियन, डिफरेंट लाइफस्टाइल। लोग हेजिटेट करते थे रूम देने से, और इसीलिए कुरियन रहने लगा डेयरी के गैराज में। सोचिए, अमेरिका की लैब से सीधा डेयरी गैराज। डिसअपॉइंटमेंट ऑब्वियस था, गुस्सा भी था, रिग्रेट भी था। इन्होंने कई बार सोचा बस ये बॉन्ड खत्म हो जाए, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा जल्दी। और शुरू में इन्होंने सिर्फ काम किया, दिल नहीं लगाया, मशीन्स रिपेयर करते रहे। लेकिन फिर एक चीज ने इनका फोकस बदल दिया, गांव के किसान। रोज सुबह उनसे मिलना, उनका चेहरा देखना, उनके हाथ जो काम से घिस चुके थे, और फिर उनकी बातें सुनना, कैसे उनका दूध सस्ते में लिया जा रहा था, कैसे प्रॉफिट कोई और कमाता है और कैसे सिस्टम उनके खिलाफ खड़ा होता है। यही कुरियन के अंदर का इंजीनियर जागा, पर ये टेक्निकल इंजीनियर नहीं था, ये सोशल इंजीनियर था। इन्होंने समझा प्रॉब्लम प्रोडक्शन की नहीं है, प्रॉब्लम कंट्रोल की है। किसान प्रोड्यूस करता है लेकिन डिसाइड नहीं करता, और यहीं से कुरियन के माइंड में पहली बार एक थॉट आया, बिजनेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, बिजनेस का मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। इस फेज में इनकी मुलाकात होती है त्रिभुवन दास पटेल से, एक लीडर जो फार्मर्स के लिए खड़ा था। पटेल ने कुरियन में एक स्पार्क देखा और कुरियन ने पटेल में विजन। इन्होंने मिलकर डिसाइड किया, हम मिलकर सिस्टम बदलेंगे। कुरियन ने अपने शहर का सपना साइड में रखा, इन्होंने डिसाइड किया मैं यहीं रहूंगा, यहाँ कुछ बड़ा करूंगा। ये डिसीजन इजी नहीं था, पर ये डिसीजन हिस्ट्री चेंजिंग था, और यहीं से शुरू होती है एक्चुअल बिजनेस जर्नी। नो फंडिंग, नो ब्लूप्रिंट, सिर्फ बिलीफ, बिलीफ कि अगर फार्मर्स ओनर होंगे तो सिस्टम चलेगा। पर ये आइडिया इम्प्लीमेंट करना सबसे मुश्किल पार्ट था, लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, ऑपोजिशन थी और सिस्टम ऑलरेडी पावरफुल था। और यहीं से शुरू होता है रियल स्ट्रगल, कैसे कुरियन ने टीम बनाई, कैसे लोगों को कन्विंस किया और कैसे एक कोऑपरेटिव मूवमेंट बना, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन गाना सुनते हैं पहले, गाने के बाद फिर से लौटूंगी, शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

गाना है फ्रॉम द मूवी छावा और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और हम रुक गए थे एक डिसीजन पर। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने डिसाइड कर लिया था शहर का कंफर्ट छोड़कर गांव में कुछ बड़ा करना है, लेकिन डिसीजन लेना एक चीज होती है और डिसीजन पर टिके रहना बिल्कुल अलग होता है। यहीं से शुरू होती है रियल स्ट्रगल, क्योंकि जब आप सिस्टम बदलने की बात करते हो ना तो सिस्टम आपको आसान रास्ता नहीं देता। कुरियन का आइडिया सिंपल था, फार्मर्स खुद अपने दूध के मालिक होंगे, मिल्क कलेक्ट भी उनका, प्रोसेसिंग भी उनकी और प्रॉफिट भी उनका। सुनने में सिंपल लगता है ना, लेकिन उस टाइम के लिए ये आइडिया बहुत डेंजरस था। डेंजरस क्यों? क्योंकि इस आइडिया से मिडिलमैन का रोल खत्म हो रहा था, प्राइवेट डेयरीज का कंट्रोल हिल रहा था और पावर शिफ्ट हो रही थी गांव के लोगों के हाथ में। रेजिस्टेंस आया हर लेवल से, लोकल ट्रेडर्स बोले ये नहीं चलेगा, ऑफिशियल्स बोले फार्मर्स बिजनेस नहीं चला सकते। कुछ लोग हंस पड़े, कुछ लोग गुस्सा हो गए और कुछ लोग अंदर ही अंदर कुरियन के खिलाफ प्लानिंग करने लगे। कुरियन के पास ना पॉलिटिकल पावर थी, ना पैसा, ना बैकिंग, उनके पास सिर्फ एक चीज थी, लॉजिक और बिलीफ। उन्होंने फार्मर्स को लेक्चर नहीं दिया, उन्होंने फार्मर्स को बॉस बनाया। मीटिंग्स हुई छोटी छोटी बैठ के गांव के मंदिर के बाहर, पेड़ के नीचे, कभी डेयरी के फ्लोर पर। कुरियन समझाते थे मिल्क तुम्हारा है, डिसीजन भी तुम्हारा होना चाहिए। शुरू शुरू में फार्मर्स खुद बहुत कंफ्यूज थे, उन्होंने जिंदगी भर सर झुकाकर काम किया था, अचानक उनसे कहा जा रहा था तुम ओनर हो। ये आइडिया भी सीखना पड़ता है। कुरियन का सबसे बड़ा स्ट्रगल था ट्रस्ट बनाना, सिस्टम पे नहीं लोगों पे। इन्होंने कभी प्रॉमिस नहीं किया मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा, इन्होंने सिर्फ इतना कहा जो तुम्हारा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, एक फार्मर, फिर दूसरा, फिर पूरा गांव, और यहीं से टीम बनाना शुरू हो गया। कुरियन को पता था ये फाइट अकेले नहीं जीत सकता, इन्होंने इंजीनियर्स, मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स को ज्वाइन करवाया, लेकिन एक कंडीशन के साथ, ईगो बाहर छोड़कर आना, क्योंकि यहां बॉस कोई और नहीं, फार्मर्स हैं। ये कंसेप्ट प्रोफेशनल्स के लिए नहीं आया था, शहर के लोग गांव के लोगों के नीचे काम करें ये आसान नहीं था। बहुत लोग आए और बहुत चले गए, कुरियन उनको रोकते नहीं थे। वो कहते थे जो पावर शेयर नहीं कर सकता वो यहां काम नहीं कर सकता। और यहीं से बन जाती है अमूल की कोर टीम, लोग जो सैलरी के लिए नहीं पर्पस के लिए आए थे। और जैसे जैसे सिस्टम स्ट्रांग होता गया, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग होता गया, इंटरनेशनल प्लेयर्स को प्रॉब्लम्स होने लगी। उन्हें लगा इंडिया सिर्फ कंज्यूमर बना रहा है, प्रोड्यूसर नहीं। लोकल पॉलिटिक्स ने भी रुकावट डाली, फाइल्स अटकने लगी, अप्रूवल्स डिले होने लगे और कई बार तो कुरियन को ओपनली थ्रेटन भी आने लग गए। लेकिन कुरियन एक चीज पर क्लियर थे, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, न क्वालिटी पे, न ओनरशिप पे, न फार्मर्स के हक पे। इनकी एक लाइन बहुत फेमस हुई थी, इफ यू वॉन्ट टू फेल ट्राई प्लीजिंग एवरीवन। इस एटीट्यूड का रिजल्ट ये हुआ जो धीरे धीरे सिस्टम झुकने लगा, मिल्क कलेक्शन बढ़ने लगा, प्रोसेसिंग इम्प्रूव होने लगी और इस ब्रांड पे भरोसा बनने लगा। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये एक मूवमेंट बन रहा था। गांव के लोग पहली बार महसूस कर रहे थे कि उनकी आवाज मैटर करती है और कुरियन एक इंजीनियर से लीडर बन चुके थे। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी, क्योंकि असली टेस्ट तब होता है जब नंबर्स आते हैं, स्केल आता है और दुनिया नोटिस करने लगती है कितना बड़ा बना अमूल, कितना टर्नओवर है और आज प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ये सब बताऊंगी आपको, लेकिन गाने के बाद गाना सुनते हैं। गाने के बाद फिर से लौटूंगी, शो है बिजनेस।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

वैसे डॉक्टर कुरियन के लिए ये गाना तो बनता है। हम बात कर रहे हैं अमूल ब्रांड के बारे में, शो है बिजनेस अनप्लग्ड। और अभी हमने थोड़ी ही देर पहले बात की थी एक आइडिया का जन्म, उस आइडिया का स्ट्रगल और एक आदमी का सिस्टम के सामने खड़ा रहना। और अब बात होगी रिजल्ट्स की, नंबर्स की, इम्पैक्ट की, और उस चीज की जो शायद नंबर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लेगेसी। जब अमूल का मॉडल स्टेबल होने लगा था तब दुनिया ने नोटिस किया मिल्क सिर्फ ज्यादा नहीं हो रहा था, मिल्क फेयर हो रहा था। फार्मर्स को पहली बार टाइम पर पेमेंट मिल रही थी, ट्रांसपेरेंट सिस्टम मिल रहा था और सबसे इम्पोर्टेंट उन्हें इज्जत मिल रही थी। धीरे धीरे आनंद का एक्सपेरिमेंट पूरे गुजरात में फैला और फिर पूरे इंडिया में। 1960s से 70s के दौर में जब इंडिया फूड शॉर्टेज से जूझ रहा था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के मॉडल ने एक नया रास्ता दिखाया और इसी से जन्म हुआ ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड कोई स्कीम नहीं थी, ये एक मूवमेंट था। इस मूवमेंट ने मिल्क प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन तीनों को एक साथ जोड़ा। रिजल्ट, इंडिया जो कभी मिल्क इम्पोर्ट करता था वो दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया। आज अमूल सिर्फ बटर या दूध नहीं है, अमूल एक ट्रस्ट है। लैक्स ऑफ फार्मर्स, थाउजेंड ऑफ विलेजेस, मिलियन ऑफ कंज्यूमर और सब एक ही चेन का हिस्सा है। और सबसे पावरफुल बात, अमूल किसी एक इंसान की कंपनी नहीं है, ये फार्मर्स की कंपनी है। डॉक्टर कुरियन ने कभी अमूल को अपनी पर्सनल एम्पायर नहीं बनाया, इन्होंने सिस्टम बनाया जो उनके बाद भी चल सके। आज डॉक्टर कुरियन हमारे बीच नहीं है लेकिन उनका विजन हर सुबह हमारी ब्रेकफास्ट टेबल पर होता है और शायद यही सबसे बड़ी सक्सेस है। उन्होंने एक बात बार बार कही थी, इंडिया इज अ पुअर कंट्री बट इंडियंस आर नॉट पुअर। प्रॉब्लम पैसों की नहीं होती, प्रॉब्लम सिस्टम्स की होती है। और आज जब हम स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स, फंडिंग रोड्स की बात करते हैं ना, तो डॉक्टर कुरियन की कहानी एक जरूरी रिमाइंडर है कि बिजनेस का मतलब सिर्फ वैल्यूएशन नहीं होता, बिजनेस का मतलब होता है वैल्यू क्रिएशन। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है या बनना चाहते हैं तो शायद ये कहानी आपसे एक सवाल पूछती है, आप जो बना रहे हो वो सिर्फ आपको बड़ा बना रहा है या दूसरों को भी? डॉक्टर कुरियन ने दुनिया को ये दिखाया कि अगर आप पावर को राइट हैंड्स में दे दो तो रेवोल्यूशन लाउड नहीं होता लेकिन परमानेंट होता है। इन्होंने गैराज से काम शुरू किया पर सपना सिर्फ अपने लिए नहीं देखा, इन्होंने किसान को हीरो बनाया और खुद बैकग्राउंड में खड़े रहे। और शायद यही रियल लीडरशिप होती है। इसीलिए आज के बिजनेस अनप्लग के एंड पर मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर आप कुछ शुरू कर रहे हो ना तो सिर्फ ये मत पूछिए इससे मैं क्या कमाऊंगा, कभी ये भी पूछिए इससे कौन बदलेगा। क्योंकि जब आप लोगों की जिंदगी बदलते हो तो हिस्ट्री खुद आपके नाम लिख जाती है। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड। आज की कहानी नंबर्स की नहीं थी, ये नियत की कहानी थी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, एक नए बिजनेस, एक नए विजन और एक नए अनप्लग्ड सच के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हट के। कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग।

सोचिए एक गांव जहां कल तक बच्चे हंसते थे, खेलते थे और सुबह उठती थी जिंदगी। और फिर

सब कुछ खामोशी में। FM पर मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। कल्चर कारवा की आज की कहानी आपको लेकर जा रही है एक ऐसे गांव जो सिर्फ रहस्य से बना हुआ है, कुलधरा। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर थार के सीने में बसा एक गांव जो आज सिर्फ खंडर है। कहा जाता है ये गांव 13th सेंचुरी में बसा था पालीवाल ब्राह्मिन्स के द्वारा। बात की जाए पालीवाल ब्राह्मिन्स की, कहा जाता है पालीवाल सिर्फ पंडित नहीं थे, वो ब्रिलियंट इंजीनियर्स, फार्मर्स और प्लानर्स भी थे। अगर इस गांव की बात की जाए तो कहा जाता था ये गांव अपने टाइम से भी काफी आगे था। जैसे थार जैसे रेगिस्तान में भी कुलधरा में पानी था, और इतना ही नहीं यहाँ एडवांस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अंडरग्राउंड चैनल्स और ऐसे घर बने थे जो गर्मी में ठंडे रहते थे। वो कहा है कि जिन्होंने रेगिस्तान को जिंदा रखा उनका शहर ही

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि और कल्चर कारवा का आज का सफर हमें लेकर जा रहा है कुलधरा की तरफ। कुलधरा की उस रात की कहानी, कहते हैं वो रात सबसे मशहूर कहानी लिखी गई। कहानी कहती है जैसलमेर का एक अत्याचारी दीवान गांव की एक सुंदर लड़की पर बुरी नजर डाल बैठा। उस दीवान ने सबको हुक्म दिया, या तो शादी होगी या फिर पूरा गांव सजा भुगतेगा। पर उस रात गांव वालों ने एक फैसला लिया, लड़ने के बजाय चले जाने का।

उसी रात खाली हो गई। गांव वाले अपना सब कुछ छोड़कर चली गई, पर जाने से पहले एक चीज छोड़कर, बद्दुआ। कुलधरा की वो रात की कहानी आज भी बद्दुआ और रहस्य में घूमती है। इस रहस्य के बारे में जानने के लिए बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजी अंजलि और कल्चर कारवा का आज का सफर घूम रहा है कुलधरा के रहस्य की तरफ। बद्दुआ और रहस्य। बद्दुआ ये थी, जो यहाँ बसेगा उसका विनाश होगा। कहा जाता है ये गांव बद्दुआ और रहस्य से भरा है। तब से आज तक कुलधरा कभी पूरी तरह बसा नहीं। लोग कहते हैं रात को आवाजें आती हैं, परछाई दिखती है। यहाँ भूत नहीं, यहाँ अधूरी जिंदगियां हैं।

बद्दुआओं से भरा ये गांव क्या कभी बस सका या आज भी खाली है? और आखिर हिस्ट्री क्या कहती है, ये जानने के लिए बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

89.6 FM पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे अंजली। और कुलधरा की ये कहानी हमें हिस्ट्री की तरफ लेकर जाती है। कहा जाता है कि हिस्टोरियंस कहते हैं शायद गांव के खाली होने की वजह रही भयंकर सूखापन या फिर बहुत भारी लगान लगाना। कहा जाता है कि पानी की कमी भी एक रीजन हो सकती है, पर सवाल आज भी वही का वही है, फिर सब एक साथ एक ही रात में कैसे गए?

और अगर आज बात की जाए इस जगह की, तो कहा जाता है कि कुलधरा आज एक प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट है। दिन में टूरिस्ट आते हैं और रात को सिर्फ कहानियां रह जाती हैं। कहा जाता है कि कुलधरा हमें डराता नहीं, ये हमें याद दिलाता है कि जुल्म के आगे कभी कभी छोड़ देना हिम्मत होती है। तो ये थी कुलधरा की कहानी, एक गांव की जो कभी मिटा नहीं बल्कि बस छुप गया। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है कल्चर कारवा के सफर को यहीं खत्म करने का। कल फिर से मिलेंगे एक नए सफर के साथ, एक नई कहानी के साथ, कुछ नई यादों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
4: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
3: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।
4: तुम जितनी कोशिश कर लो, ऊंचा ना होगा कोई।

0: है रेडियो महारानी का।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

आज कहीं से भी कोई भी फोरकास्ट था ही नहीं बारिश का, और पता नहीं कहां से अचानक से बारिश आ गई, और बारिश जब आई तो फिर मौसम बहुत ही ज्यादा वाला औसम हो गया। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर ऐसे ही गर्मियों में, मतलब अभी गर्मी तो चल रही है, तो ऐसे ही पूरा का पूरा जून हर दूसरे दिन बारिश आ जाए तो ठीक नहीं हो जाएगा, बहुत हद तक ठीक हो जाएगा और मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। बार बार लगातार स्वागत करता रहूंगा आपका। और बारिश की अगर बात करेंगे तो सब चीजों के बारे में बात करेंगे एंड सारे पहलुओं से बात करेंगे। कोई कह रहा था एल नीनो आएगा, मतलब ये साइंटिफिक टर्म्स है जिसके बारे में मैं ऑलमोस्ट एक हफ्ते से बात कर रहा था, और अभी मैं आ चुका हूँ ना, तो अब अगले 3 घंटे तक बातें होने वाली, खूब सारी मस्ती भी होगी खूब सारी, और इसी के साथ साथ गाने भी चलेंगे ढेर सारे। तो आप लोगों को अगर इसी दौरान मुझसे बातें करनी है, अपनी पसंद का गाना चलवाना है या फिर कुछ भी बात करनी है, मतलब बताना है कि कहीं पर ट्रैफिक में फंसे हैं, तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। कैसे? नंबर है जी मेरा 9654896896। इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं आप लोग। और इसी के साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि आजकल ना इमरजेंसी अलर्ट आ रहा है हम सबके फ़ोनों में, और उस इमरजेंसी अलर्ट की वजह से एक अलर्ट फटीग हो सकता है हम सबको। क्या होता है अलर्ट फटीग, इसके बारे में बात करेंगे। एंड इलॉन मस्क के बारे में पता चला था आप लोगों को? ट्रिलियनेयर बन चुका भाई ये आदमी। और बता दूं आपको, अगर ये इंसान पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं उन सबको पैसे बांट दे, अपनी पूरी संपत्ति बांट दे, तो कितने रुपए आएंगे सबके पास? करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बात। और रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए खूब सारे गाने भी चलेंगे, उन्हीं में से ये गाना अजूल और सिरा का मिक्स मैशअप, ओनली ऑन 89.6 FM। कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

मुझे कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं थी कि आज सुबह उठते ही इतना प्यारा मौसम देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जो 9 बजे के आसपास बारिश हुई है उसको देखने के बाद तो दिल गार्डन गार्डन ही हो गया था, मगर अब कोई गार्डन वाला सीन नहीं है क्योंकि अब आने वाले कुछ दिन आपके गर्मी वाले होने वाले हैं ऐसा बोला जा रहा है। वैसे ऐसे तो 11 तारीख को भी बोला था, 12 तारीख को भी ये बोला था कि अगले 7 दिन गर्मी बढ़ेगी, मगर फिर उसके बाद 15 को भी बारिश आ गई, 16 की सुबह भी बारिश आ गई और मौसम अच्छा अच्छा सा हो गया। और मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि इतनी गर्मी में हर बार ऐसी थोड़े थोड़े दिनों में बारिश होती रहे तो अच्छा ही हो जाएगा ना। खैर, अगर मैं मौसम की बात करूँ, इस बारिश की वजह से पोल्यूशन बहुत हद तक कम हो चुका है, तो अभी खुली हवा में आप लोग सांस ले सकते हैं। हो सके तो प्लीज़ गंदगी मत जलाना, मतलब कुछ लोग कूड़ा जला देते हैं आज की डेट में भी, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। और इसी के साथ साथ आप सभी को बता दूं, आने वाले कुछ दिन अब गर्म रहने वाले हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर फिर से इस आने वाले हफ्ते में 40 से 41 डिग्री पहुंच सकता है, मतलब कि संडे टू मंडे तक आप लोगों को 40-41 डिग्री टेम्परेचर भी देखने को मिल जाएगा। मगर हवा में तो नमी बनी रहेगी क्योंकि अभी बारिश हुई है। और बस एक ही चीज़ प्रे करूंगा कि ये लू ना चले, क्योंकि अगर ये लू चलेगी तो फिर इससे दिक्कत हो सकती है हम सभी को। तो आप अपना ख्याल रखिए क्योंकि मौसम किसी भी करवट बदल जा रहा है, कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, प्री मानसून शार्स कहते हैं इसे, और मौसम विभाग का कहना है कि ऐसा फिर से हो सकता है। तो चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए। वापस आकर बात करते हैं इस इमरजेंसी अलर्ट की, क्योंकि बारिश आने से करीब करीब 2-3 घंटे पहले एक अलर्ट आता है हमारे फ़ोन में और वो डरा के रख देता है, चाहे आपका फ़ोन साइलेंट हो चाहे आपका फ़ोन मतलब रिंगिंग मोड पे हो, उससे आवाज़ तो आएगी। आएगी कैसा अलर्ट, कौन सा अलर्ट, सबके बारे में करेंगे बात मगर इस गाने के बाद।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा।

डू यू नो वॉट इज अलर्ट फटीग, इसको क्या कहते हैं, मतलब क्यों है ये, क्या है ये, सब कुछ बताऊंगा, रुको जरा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड वंडा आप सभी के साथ। बारिश आने से पहले, आंधी आने से पहले, तूफान आने से पहले एक अलर्ट फोन में आ जाता है और वो अलर्ट ऐसा आता है कि फोन हिला के रख देता है। और अभी कुछ टाइम पहले टेस्टिंग हुई थी, उसके बाद अब अलर्ट जारी किया जा रहा है जो कि बार बार सरकार द्वारा भेजा जा रहा है, इमरजेंसी अलर्ट, जिसमें बोला जाता है कि अगले 3 घंटे के दौरान आपके एरिया में बिजली गिर सकती है या फिर आंधी तूफान आएगा 60 से 80 किलोमीटर की स्पीड में। तो ये सारी चीजें आपको अलर्ट करी जाती है कि प्लीज घर से बाहर मत निकलिएगा। मगर फिर क्या होता है, फिर होता है अलर्ट फटीग। अलर्ट फटीग में होता ऐसा है कि बार बार बार बार जब आपके पास ऐसे अलर्ट्स आने शुरू होंगे तो फिर आप इसके लिए बिल्कुल हो जाओ यार, निश्चिंत रहो यार, कुछ नहीं हो रहा, आप लोगों के मन में ये आएगा। तो ये चीज़ अपने मन में पहले तो लानी नहीं है। और दूसरी चीज़, अब लोग कह रहे हैं कि देखो बार बार ये जो छोटी मोटी बारिश होती है ना, इनके लिए ऐसे अलर्ट नहीं भेजना चाहिए, इनके लिए सिर्फ आप एक मैसेज भेज दो, जो लोग अलर्ट होंगे वो हो जाएंगे। और फिर इसके साथ साथ अगर ये आपको इमरजेंसी अलर्ट भेजना है तो आप तब भेजो जब भूकंप आने वाला है या फिर कोई और आपदा आने वाली है, तो उस टाइम पर आप लोग इस अलर्ट को भेजोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं आप सभी को एक बार बात बोलना चाहूँगा, देखो ये अलर्ट हमारी सेफ्टी के लिए ही है, तो इसको कभी भी नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर कंट्री में ऐसे अलर्ट्स आते हैं, अब इंडिया में भी आने शुरू हो गए हैं। दैट्स अ गुड आइडिया एंड अ गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो नज़रअंदाज आप लोगों को नहीं करना है। तो लगातार अलर्ट भेजने की वजह से अलर्ट फटीग बढ़ती है, जिससे लोग ये चेतावनियों को नज़रअंदाज करने लग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और अभी फिलहाल आप लोगों को रेडियो महारानी सुनते जाना है, क्योंकि आप सभी के लिए ढेर सारे गाने बजते रहेंगे, उन्हीं में से ये गाना ब्राउन मुंडे, रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

आपको पता है ये जो चिप्स नूडल्स और साथ ही साथ जो चीनी है ये हम सब के लिए कितनी ज्यादा हानिकारक है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और देखो हमारे लिए तो हानिकारक है मगर फिर भी हम लोग इसे खाते हैं, और ऑलमोस्ट कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि रोज चिप्स खाते हैं, रोज नूडल्स भी खाते हैं, रोज कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं जिसमें भर भर के शुगर होता है। तो देखो आप लोगों को इस चीज़ को अभी से कंट्रोल करना पड़ेगा इससे पहले कि देर हो जाए। और अगर मैं बात करूँ एक ऐसे इंसान की, एक ऐसी लेडी की जिसने अपने बच्चे को, जब उसका बच्चा 3 साल का हो गया ना, उसके बाद उसने पहली बार बच्चे को नूडल्स, चिप्स और चीनी तीनों चीज़ खिलाई, एंड बच्चे का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। क्योंकि देखो छोटे बच्चों के लिए शुगर बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है, एकदम से शुगर स्पाइक होगा, उनकी जो हाइपर एक्टिविटी वो बढ़ जाएगी, एक होती है एक्टिविटी, हाइपर एक्टिव हो जाएंगे बच्चे और शैतानियाँ बहुत ज़्यादा करने लगेंगे। तो बच्चों के लिए सब चीज़ें ख़राब है और यही इस लेडी को पता था, इसलिए इसने अपने बच्चे को कभी भी कुछ भी नहीं खिलाया था। मगर जैसे ही उसका 3rd birthday आया तो पहली बार इसको नूडल्स खिलाए, पहली बार इसको चिप्स ऑफर किए, तो बच्चा सबसे पहले यही पूछ रहा है मम्मी ये क्या होता है, क्योंकि उसने कभी नूडल्स खाए ही नहीं थे। और फिर उसके बाद उसने पहली बार जब प्रोसेस्ड फूड, शुगर, ये सब चीज़ खाया तो ही वॉज हैप्पी, बिकॉज आपको पता है ना फील गुड देता है हम लोगों को, मतलब चीनी से क्या होता है अच्छा सा लगता है, मीठा खाने से अच्छा सा लगता है, तो उसको भी अच्छा लगा। बट फिर उसके बाद लेडी ने यही बताया कि मैंने अपने 3 साल के बच्चे को आज तक कभी प्रोसेस्ड फूड नहीं खिलाया था, शुगर नहीं खिलाया था, जंक फूड नहीं खिलाया था। तो अभी जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं उन सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इस चीज़ की कोशिश करना कि आप लोग किसी भी छोटे बच्चे को जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। वैसे अवॉइड ही कर सकते हैं क्योंकि आजकल के बच्चे तो ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हैं, उनको तो चाहिए सिर्फ चॉकलेट और टॉफ़ीज़ एंड ऑल। खैर उनकी क्या गलती, हम भी तो टॉफी ही खाते थे। चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे और उसी के साथ साथ वापस आकर बात करेंगे एक्टर्स के बारे में कि उनको कितना डाइट कॉन्शियस रहना पड़ता है, करेंगे उनके बारे में बात मगर इस

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

हम लोग जब भी एक्टर्स की लाइफ देखते हैं, हम लोगों को लगता है यार क्या मजेदार लाइफ है इन लोगों की, हर तरफ से कैमरा से घिरे हुए हैं, फैंस हैं इनके हर तरफ, मगर जो दिखता है ना वो असल में होता नहीं है। बहुत अच्छी लाइफ दिखती है बाहर से मगर असल में ऐसा नहीं है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं वो सिंपल सा ये है कि अभी रिसेंटली कॉकटेल 2 के प्रमोशन में आए थे कौन, वन एंड ओनली चार्मिंग शाहिद कपूर और उनके साथ कृति सैनन एंड साथ में रश्मिका मंदाना। तो ये तीनों के तीनों जब आए थे प्रमोशन के लिए तो उनको ना वहाँ पर वड़ा पाव दिया गया, बोला वड़ा पाव खाओ। और सबसे बड़ा सवाल ये आया और कृति कह रही है उसमें कि क्या हमें सच में खाना है, तो मतलब क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है देखो चीट मील होती है, चीट मील तो कर ही सकते हैं, बट इन तीनों ने उसको खाया नहीं, बस उठाया वड़ा पाव और उसके साथ बस एक पोज दिया और बस उसके बाद ये सवाल कर लिया कि क्या हमें इसे सच में खाना है, नहीं खाना ना, उन्होंने वापस रख दिया वड़ा पाव। फिर यहाँ पर आते हैं कमेंटेटर्स, कमेंटेटर्स भी नहीं कहूँगा मैं, कमेंटर्स कहूँगा क्योंकि वो करते हैं पोस्ट पर कमेंट और फिर उसके बाद लोग कह रहे हैं वाह क्या एक्टिंग है क्योंकि इन्होंने सिर्फ खाने की एक्टिंग करी और खाया नहीं। अब आप लोग सच सच बताइए आपका फेवरेट फूड आपके सामने हो, चलो मैं बोल देता हूँ बारिश के टाइम पर समोसा आपके सामने हो तो क्या आप उसको छोड़ सकते हो, अगर एक्टर बनना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, वापस आकर और भी ढेरों बातें होंगी, मगर उससे पहले आप सभी के लिए एक मिक्स मैशअप गाना रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

क्या आपको मालूम है अभी थोड़े दिनों पहले ही इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया है, बहुत सारा मीन्स ट्रिलियनेयर बन चुके हैं। और अगर उनके सारे पैसे इस अर्थ पर रहने वाले सब लोगों में बांट दिए जाए तो व्हाट डू यू थिंक कितने हो जाएंगे, मतलब सबको कितने रुपए मिलेंगे? तो मैं बताता हूँ कितने रुपए मिलेंगे। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया में कितने लोग रहते हैं? इंडिया में सबको पता है 150 करोड़ लोग रहते हैं, मगर ऑल ओवर वर्ल्ड कितने लोग रहते हैं? ऑल ओवर वर्ल्ड रहते हैं 8.2 बिलियन लोग, मतलब करीब करीब 820 करोड़ की जनता है पूरे पृथ्वी पर। और अगर इलॉन मस्क के सारे पैसे इन सब लोगों में बांट दिए जाए तो हर इंसान के पास करीब करीब 10,300 रुपये आ जाएंगे। सोचो इतने पैसे हैं इस आदमी के पास। और अगर मैं बोलूँ सिर्फ और सिर्फ इंडिया में अगर बांट दिए जाएँ ट्रिलियनेयर के पैसे सारे के सारे, तो फिर हर इंसान के पास 60,000 रुपये मिल सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इनके पास जितने पैसे अगर उसके नोट में कन्वर्ट कर दो, उन्हें कैश में कन्वर्ट कर दो और कैश गिनने अगर हम लोग बैठ जाएं, तो फिर कैश गिनने में लग जाएंगे 31,700 साल। एंड ये जब मैंने पढ़ा ना, मेरा माइंड शॉक हो गया एंड आई वॉज लाइक ये क्या है, इतने पैसे भी होते हैं क्या? तो बता दूं आपको, इस लड़के ने बहुत मेहनत करी। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इलॉन मस्क इंडिया के है ही नहीं, इंडिया के तो नहीं है, माफ कीजिए अर्थ के है ही नहीं। लोग कहते हैं कि ही इज एन एलियन, आई डोंट थिंक सो, बट ठीक है कुछ लोग कह रहे हैं तो कहने दो, उनके पास कोई प्रूफ है नहीं और प्रूफ तो मिलेगा भी नहीं, कह सकते हैं ना। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए एक मिक्स मैशअप गाना रेडियो महारानी 89.6 पर।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

बॉल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: गर्लफ्रेंड हूँ इसलिए कलेशी हूँ। यार निया सुन।
1: हाँ सिया बोल।
0: यार मैंने पूछा कैसे हो, उसने बोला बढ़िया, ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो। और जब मिलने के लिए बोलो तो कहता है टाइम नहीं है, और दोस्तों के साथ घूमने के लिए टाइम ही टाइम है। जिस लड़की को जानता तक नहीं है उसकी फोटो पे भी लाइक कर देता है, और जब पूछो तो बोलता है बेबी बस फ्रेंड है। और पता है रील्स पे रिप्लाई ना करके रिएक्ट करके छोड़ देता है, और जब मैं कंप्लेंट करूं तो मुझे कलेशी कह देता है।
1: सही कह रही है, सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कलेशी कहते हैं।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

क्या आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम सही चल रहा है? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा तो सही चल नहीं रहा है, और ऐसा ही सेम टू सेम थर्सडे और फ्राइडे को भी हुआ था, और फ्राइडे को सच में हुआ था। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ हो गई है जो कि आजकल डेली लाइफ का हिस्सा है, एंड सोशल मीडिया देखो कुछ लोगों के लिए रोटी का जरिया है, मीन्स रोजी रोटी का जरिया है, एंड उन लोगों के लिए अगर सोशल मीडिया ठप पड़ जाए फिर उनके लिए दिक्कत नहीं हो जाएगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो पता क्या है, लास्ट वीक फ्राइडे को भी ऐसा ही हुआ था कि सोशल मीडिया डाउन हो गया था, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों डाउन हो गया था, और कुछ लोगों ने कंप्लेंट करी कि वो लोग कंटेंट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, लॉग इन करते समय दिक्कत आ रही थी या फिर रिफ्रेश करते वक्त दिक्कत आ रही थी, मैसेज भेजने में दिक्कत आ रही थी लोगों को। हम लोगों के लिए तो ठीक है क्योंकि हम लोग तो यूज़र्स हैं, मगर उन लोगों के बारे में सोचिए जो क्रिएटर्स हैं, जो लोग डेली डेली कंटेंट बनाते हैं और डालते हैं और अपलोड करते हैं और उनके फॉलोअर्स उनको देखते हैं, तो उनकी रोजी रोटी का जरिया वही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल को अगर बाय चांस खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो जाए, और बाय चांस अगर ऐसा हो गया कि सोशल मीडिया डाउन हो गया पूरे के पूरे एक से दो दिन तक, तब सोचिए क्या हाल होगा दुनिया का। क्योंकि हम लोगों का फेवरेट टाइम पास क्या है? सोशल मीडिया। और मुझे ऐसा लगता है अगर डाउन हो गया तो फिर उसके बाद काफ़ी सारे लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर बताइएगा। नंबर है जी 9654896896। अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ। वापस अगर बात करते हैं उस लड़के के बारे में जिसने प्लेटफॉर्म टिकट तो खरीदी मगर फिर भी 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ गया। क्यों भरा उसने जुर्माना, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, इसलिए गधा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: सोचा था कॉर्पोरेट ज्वाइन करके आराम की नौकरी होगी, लेकिन दिन में 10 बार तो मीटिंग हो जाती है। मैनेजर को भी काम लंच के 10 मिनट पहले याद आता है। लीव मांगने पर वाई वाई इंटरव्यू शुरू हो जाता है। काम मैं करता हूँ, क्रेडिट मैनेजर ले जाता है, और ये बात जब मैं घर वालों को बता दूँ तो वो मुझे गधा बोल देते हैं।
2: ठीक कह रहे तुरेंद्र, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कितना भी कर ले, रहेगा तो गधा ही।

की तदी मशीन बैड बॉय ऑन द ट्रैक बेबी करे पाउंस जैसे हिटरों के चेक सर पे है क्राउन बेबी नो कैप सिक मेरी ट्रिप मेरी सिक वो कैप बच्चे बच्चे गोराटे मेरा रैप बेबी माइंड होते ब्लो जब बीट करे

0: ओए बादशाह
1: Let's go.
2: आप कितने साल के थे जब आपको पता चला कि आप लोग अगर रेलवे स्टेशन पर किसी फैमिली मेंबर को छोड़ने जा रहे हैं तो भी आपको टिकट लेनी पड़ेगी? नहीं नहीं, जो ट्रैवल कर रहा है उसको तो टिकट लेनी पड़ेगी, मगर आपको भी प्लेटफॉर्म टिकट खरीदनी पड़ेगी। और लास्ट टाइम जब मैंने प्लेटफॉर्म टिकट खरीदी थी, दैट वॉज ₹10, मतलब 10 रुपये की टिकट आती थी उस टाइम। अब कितने की आती है मुझे नहीं पता। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि एक लड़के ने प्लेटफॉर्म टिकट ली, मगर उसके बावजूद उसको 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ गया। फिर उसके बाद उसने बनाई एक वीडियो और उसने वीडियो में बोला कि देखो ऐसा है, ये प्लेटफॉर्म टिकट एक्सपायर हो गई है और अब मैं सुधार दूंगा रेलवे को। और ये बंदा लिटरली बहुत गुस्से में है, एंड नो डाउट गुस्से में तो होगा ही ना भाई। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होगा तो आप लोग भी गुस्से में आ जाएंगे, क्योंकि अगर मैं प्लेटफॉर्म टिकट खरीदूं और उसके बावजूद मेरा 500 रुपये का फाइन हो जाए, 500 रुपये का मुझ पर जुर्माना लग जाए, तो फिर मुझे भी गुस्सा आएगा। अब हुआ ये कि अपनी फैमिली को छोड़ने गया था, महाराष्ट्र में एक कल्याण स्टेशन है वहाँ पर, और फैमिली को जब छोड़ने गया स्टेशन पर तो ट्रेन थी लेट, ट्रेन 5 घंटे लेट हो गई, जिसमें इस लड़के की कोई भी गलती नहीं थी। और फिर उसके बाद इसके पास जो प्लेटफॉर्म टिकट था, तो सभी को बता दूं प्लेटफॉर्म टिकट 2 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाता है। मतलब अगर आपने अभी इस टाइम, मतलब अगर मैं टाइम की बात करूं तो ऑलमोस्ट 7:05 हो रहे हैं, तो अगर 7:05 पर आपने प्लेटफॉर्म टिकट खरीदा है तो वो 9:05 तक ही वैलिड रहेगा। और मान लेते हैं ट्रेन और लेट हो जाए तो फिर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो इस पर ये लड़का यही कह रहा है कि देखो इसमें मेरी क्या गलती है, आप लोग मेरे पैसे क्यों खा रहे हो? तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी टिकट तो लेना ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि देखो ट्रेन लेट हुई है, इसमें जिसने प्लेटफॉर्म टिकट खरीदी है उसकी क्या गलती है? तो आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नंबर है जी मेरा 9654896896। इस पर आप लोग मैसेज या कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं आप लोग। हाँ, कॉल उठाने में काफ़ी बार देरी हो जाती है, मगर उठाते ज़रूर हैं। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए मिक्स मैशअप गाना। वापस अगर बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो ट्रेन में कुछ बेच रहा है और ट्रेन में बेच बेच के उसने नोटों की गड्डियाँ कमा रखी है, कौन है वो आदमी, करेंगे उसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक चिप्स। आप लोगों ने ऐसी लाइन सुनी होगी जरूर, रेलवे स्टेशन पे सुनी है या फिर बस अड्डे पे सुनी है, सच सच बताना, फिर से रिपीट करूँ क्या? एक बार होता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। बचपन में जब मैं जाता था ट्रेन में तो घर वाले यही कहते थे, देखो पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो ऐसे ही बन जाओगे, ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक चिप्स बेचोगे। एंड अभी रिसेंटली एक वीडियो देखने के बाद लग रहा है कि ऐसा ही काम कर लेना चाहिए था, पैसा तो बहुत था। कैसे बताता हूँ। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी पर, और जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली में ये है कि एक ट्रेन के अंदर आलू बड़ा बेच रहा है एक आदमी, और उसके हाथ में 100, 200 और 500 की नोटों की एक बहुत ही मोटी गड्डी है, और उसको वो गिन रहा है आराम से खड़े होके। और ये वीडियो देखने के बाद ना सब लोग यही कमेंट कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि काम ऐसा करो कि चार लोग या दस लोग देखते ही देखते रह जाएं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को छापा मारना पड़ेगा इधर, क्योंकि देखो ये लड़का खुद से मेहनत करके वड़ा पाव बेच रहा है, आलू बड़ा बेच रहा है बेसिकली। और ट्रेन में क्या होता है, आपको क्या लगता है ट्रेन में कितने पैसेंजर्स जाते होंगे एक बार में? हज़ारों पैसेंजर्स जाते हैं, और हज़ार में से 100 लोग भी एक राउंड में खरीद लें अगर बाई चांस की बात है, 10 रुपये या 20 रुपये की मान लेते हैं एक प्लेट आ रही है, 20 रुपये की मान लेते हैं 100 लोग खरीद रहे हैं, तो 2000 रुपये तो यूं ही हो गए। और फिर उसके बाद वो दिन में कितने चक्कर लगा लेता होगा इसके बारे में ज़रा सोचो। तो ही इज अर्निंग गुड, एंड भगवान करे ऐसे ही लोग कमाते रहें, और दूसरों की कमाई देख के कभी भी इन्फ्लुएंस मत हो जाना, क्योंकि दूसरे की थाली में लड्डू हमेशा बड़ा ही दिखता है। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए गाना खामोशियां रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

क्या आपको मालूम है इंडिया क्रिकेट के अलावा और भी बहुत सारी क्षेत्र हैं जहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड इंडिया ने कमाल कर दिखाया है। इंडियन स्पोर्ट्स हमेशा प्रूव कर रहा है कि एनीथिंग इज पॉसिबल। इंडिया ने साउथ कोरिया को आर्चरी वर्ल्ड कप में हरा दिया है। आर्चरी वर्ल्ड कप का गोल्ड लेकर आ गए हैं दो खिलाड़ी। मतलब कह सकते हैं ना, पावर हाउस कहते हैं किसको, साउथ कोरिया को, क्योंकि आर्चरी में उनसे अच्छा कोई अभी तक था ही नहीं। मगर उसके बावजूद उनको हराते हुए इंडिया के दो सुपरस्टार्स गोल्ड लेकर आए हैं वर्ल्ड कप में। और बता दो आपको, ये दोनों के नाम है धीरज और कुमकुम। इन्होंने एक एक्सेप्शनल, मतलब कंपोजर, प्रिसिशन, क्या क्या इंग्लिश के वर्ड्स बोलूँ मैं, टीम वर्क दिखाया है, बस इतना बोलूँगा, टीम वर्क दिखाया है अंडर प्रेशर, क्योंकि इनके सामने थी साउथ कोरियन टीम। और इन्होंने जो ये हासिल किया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत और परिश्रम से आ सकता है। और बता दूं आपको, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट स्पोर्ट नहीं है, उसके अलावा और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। हम लोगों को सबको तवज्जो देनी शुरू करनी पड़ेगी। एज एन इंडियन सिटीज़न, इंडियन सिटीज़न, हम लोगों को सारे स्पोर्ट्स को तवज्जो देनी पड़ेगी। और अगर आपके घर के आसपास कोई भी इंसान है जो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है मगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो एक फ़ंड रेजर आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं ताकि वो अपने स्पोर्ट्स में अपना करियर परस्यू कर पाए। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए तलविंदर की आवाज़ में आप सभी के लिए गाना। और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर एक स्पोर्ट होता जिसका नाम था मारम पिट्टी, वो अगर वर्ल्ड कप में होता तो इंडिया वाले हमेशा जीत जाते। चलिए अभी तलविंदर की आवाज़ में आप सभी के लिए ये गाना।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मिनी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो टिकट कटवा लेना।

शाम होते ही पता नहीं क्यों मगर भूख बढ़ जाती है, और जैसे ही भूख बढ़ती है फिर उसके बाद सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि खाए क्या, क्योंकि देखो रात का डिनर का टाइम नहीं हुआ है अभी, बट खाना तो खाना है ना, कुछ तो खाएंगे आज हम लोग। तो स्वागत है जी आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। आपके मन में भी ये सवाल बार बार आता होगा, जब भी हम लोग शाम की भूख की बात करते हैं तो हम लोग सोचते हैं मार्केट से जाके कुछ ले आए, फिर लगता है आलस आ रहा है, छोड़ो ना ऑनलाइन मंगा लेते हैं। तो ऑनलाइन भी हम लोग काफ़ी बार ये देखते हैं मंगाना क्या है आखिर, क्योंकि जैसे ही हम लोग ऑनलाइन रेट्स चेक करते हैं फिर हम लोगों को लगता है यार एक तो रेट हाई कर रखे हैं, दूसरी चीज़ डिलीवरी फीस लगा देते हैं, फिर एक हैंडलिंग चार्ज भी लगा देते हैं, फिर हमारा मन करता है छोड़ो यार मैगी बनाओ और खा लो और सो जाओ। सो जाओ नहीं मतलब थोड़ा सा रेस्ट कर लो। चलिए इसी के साथ साथ देखो टाइम हो गया है मेरा भी कुछ पेट पूजा करने का, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से, लेता हूँ आप सभी से इजाज़त, मिलूँगा आप सभी से फिर से कल शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और भगवान करे कल सुबह भी हल्की फुल्की बारिश मिल जाए, मौसम अच्छा सा हो जाए तो दिन ही अच्छा चले जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए इसी के साथ साथ बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और वापस आएगी गीत विदेश के बाद या खूब सारे प्यार भरे नगमे और प्यार भरे गाने लेकर। तो उन्हीं में से प्यार वाला गाना तो नहीं है बट गाना बड़ा अच्छा है, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है।
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं. 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार.
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है.
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.

अनीस सेठी की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना, और इसी गाने के साथ स्वागत है आप सभी का। और शो लेकर आ गई हूँ मैं इश्क बाजियां, और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। सेगमेंट शुरू हो गया है इश्क शायराना, जहाँ दिल के लफ्ज उतरेंगे जमीन पर। और आज की शुरुआत करने वाली हूँ मैं एक बहुत ही खूबसूरत सी शायरी के साथ, कि जब कोई इंसान आपको इस कदर अच्छा लगता है, जहाँ उस इंसान की तारीफें आपने ऑलरेडी बहुत सुन ली होती हैं, और आप भी सोचते हैं यार इतनी तारीफ कर दी है सबने, तो एक बार क्यों ना इस इंसान से मिला जाए, क्यों ना इस इंसान से एक बार रूबरू हुआ जाए। तो इसी पर है कि सुना है लोग उसे आंखें भर के देखते हैं, सो कुछ दिन उसके शहर में ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सुना है उसको भी है शेरो शायरी से शराफ, सो हम भी उसके लिए कुछ पेश करके देखते हैं। सुना है उसकी बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो जब इतना कुछ सुन लिया होता है ना उसके बारे में, तो कहीं ना कहीं मिलने की इच्छा भी होती है कि एक बार तो इससे मिला जाए, एक बार तो इससे बातें की जाए। और अभी वक्त है गाने का, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है बर्फी फिल्म से, फिर ले आया दिल।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: मैं मस्त म्यूजिक सुनते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? भाई मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्रेशन देख कर ट्रैफिक लाइट भी शर्मा के ग्रीन से रेड हो गई। मगर उस दिन समझ आया, फोन पॉकेट में, ध्यान रोड पे और स्पीड जीरो पे रखो। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखो, राइडर्स हेलमेट टाइट और ड्राइवर्स सीट बेल्ट टाइट। हंसी मजाक अपनी जगह पर सेफ्टी सबसे ऊपर।
0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो आयशा।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो, सो बी कॉन्फिडेंट।
2: तुम जितनी कोशिश कर लो आयशा, ना होगा कोई।
3: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
4: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टैक्स, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत और सेगमेंट है इश्क शायराना। और जब कोई इंसान आपको बहुत अच्छा लगने लगता है ना और आपको लगता है कि इसके अलावा ना किसी से बात करने का मन ही नहीं करता, इसी पर किसी ने कितना खूबसूरत लिखा है कि किसी से बात करना बोलना अच्छा नहीं लगता, तुमको देखा है जब से मुझको कोई दूसरा अच्छा नहीं लगता, तेरी आंखों में जब से मैंने अपना अक्स देखा है मेरे चेहरे को कोई आईना अच्छा नहीं लगता, और तेरे बारे में दिन रात सोचती हूं मैं पर तेरे बारे में किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, और मेरी मोहब्बत उस मंजिल पर आ पहुंची है कि तेरी तरफ कोई और भी देखे तो भी मुझको अच्छा नहीं लगता। तो कई बार इश्क जो है ना इस मंजिल तक पहुंच जाता है कि उसके अलावा किसी और के बारे में सोचना अच्छा नहीं लगता, और अगर उस शख्स को कोई और भी देखे तो वो बात भी ना आपसे बर्दाश्त नहीं होती। तो अक्सर मोहब्बत में ऐसे ही हाल होते हैं, खफा हूँ जिनसे उन्हीं के ख्याल होते हैं। और अगला गाना है यसीर देसाई की आवाज में और बहुत ही खूबसूरत सा गाना है।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: हेलो मैम, digital.com पर आपने जो मोबाइल ऑर्डर किया था वो स्टॉक आउट हो गया।
4: पर पेमेंट तो कट हो गई थी, उसका क्या?
3: डोंट वरी मैम, रिफंड के लिए QR कोड भेजा है, आप प्लीज उसे स्कैन कर दीजिए।
4: लेकिन QR कोड से रिफंड कैसे?
3: एक्चुअली ये सबसे फास्टेस्ट मोड है पेमेंट रिफंड का।
5: बीट द चीट्स, ऐसे ही स्पैम कॉल से हो जाए सावधान, साइबर फ्रॉड से बचे, दे साइबर अवेयरनेस पर ध्यान।

बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे और मिलते रहेंगे, बातें भी जारी रहेंगी। शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत और इस गाने के साथ फिर से स्वागत है। गाना बहुत खूबसूरत है। कई बार किसी इंसान से जो मोहब्बत होती है और वो नहीं मिल पाता है तो हम यही कहते हैं उससे कि कोई नहीं यार, हम फिर कभी मिलेंगे और फिर कभी मिलकर जो किस्से हमारे अधूरे रहे थे उन्हें फिर से बुनेंगे, जो ख्वाब कहीं रह गए थे उन्हें फिर से पूरा करेंगे। तो यही हर किसी के जहन में चलता है कि मुद्दे पर आए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कभी ना कभी किसी ना किसी से मोहब्बत तो जरूर हुई होगी, लेकिन हर किसी की मोहब्बत ना मुकम्मल नहीं होती और हर बार मोहब्बत का मुकम्मल होना ही उसकी जीत नहीं होती। अधूरी मोहब्बत भी कई बार जीत का काम करती है। क्या होता है, लोग अक्सर यही कानून समझाने में लगे होते हैं कि अगर प्यार करते हो उससे तो जाओ उसके पास, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जब हालात और नाते कुछ दूर तक का सफर तय करके ऐसे मोड़ ले लेते हैं कि खुद को समझाना पड़ता है कि अगर प्यार करते हो उससे तो मत जाओ उसके पास, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में अब तुम्हारी नामौजूदगी ही उसके लिए मुनासिब है। हाँ, शायद खुश तो नहीं है वो, अब उसके हिस्से में वो अंधेरे नहीं है जो तुम्हारी जिंदगी में वो हर शाम भर दिया करता था। हाँ, बेशक बड़ा मशरूफ तो नहीं है पर महफूज है, क्योंकि उसके हिस्से अब वो तन्हाइयां नहीं जो तुम्हारा दिल दुखाने पर हर शाम उसको नसीब हो जाया करती। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है यार खुद को समझाना कि अब लौट कर उसके ख्यालों तक में नहीं जाना, अब वक्त को सहारा बनाकर उसके जहन से अपनी हर याद को वापस लाना है। लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि तुम्हारी आखिरी सांस के साथ तुम्हारी जिस्म को छोड़ रही वो आखिरी याद भी उसी की होगी, क्योंकि यादें नहीं भुला सकते आप, भले आप इंसान को भुला दें। फिलहाल वक्त है गाने का, शो इश्कबाजियां, मैं हूं इश्क वाली की।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

कितनी छोटी सी है दुनिया मेरी, एक मैं हूँ एक मोहब्बत तेरी। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत। और कहते हैं ना कि कुछ रिश्तों के ना नाम नहीं होते, कि नाम देकर सरेआम न करना, कुछ रिश्ते यूं भी महफूज रखे जाते हैं। और आप बार बार जब सामने वाले शख्स से पूछते हैं कि आप कौन है उनके, तो सामने वाले के पास ना कई बार आंसर नहीं होता है, जो आपको हमेशा इरिटेट करता है कि यार क्यों ऐसा है। लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं अपने दिल में ये उम्मीद कायम रखते हैं कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब इस रिश्ते का कोई नाम होगा। और आप अक्सर उनसे पूछते हैं, और वो अक्सर कहा करते हैं कि कोई तुमसे पूछे कौन हूं मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं, एक दोस्त है कच्चा पक्का सा, एक झूठ है आधा सच्चा सा, जज्बात को ढकने की खातिर एक बहाना है अच्छा सा, उम्र का एक साथी है जो दूर होकर भी पास नहीं, कोई तुमसे पूछे कौन हूं मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं, एक साथी है जो अनकही से कुछ बातें कह जाता है, यादों में जिसका एक चेहरा सा रह जाता है, यूं तो उसके ना होने का कोई गम नहीं है, पर कभी कभी आंखों से आंसू बनकर बह जाता है, रहता है वैसे तो मेरे ख्यालों में अक्सर, पर अब इन आंखों को उसकी तलाश नहीं, कोई तुमसे पूछे कौन हूं मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं। तो अब कोई आपसे ये पूछे तो आप यही आंसर कीजिएगा। फिलहाल वक्त है बहुत ही खूबसूरत से गाने का, अमरिंदर गिल की आवाज में है अगला गाना, तो चलिए सुनते हैं इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके पर।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: आज की सेफ्टी टिप्स सुन लो, वरना आपकी लाइफ बन जाएगी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी रील। रूल नंबर 1, जियो टैग मत लगाओ, क्योंकि ये इंस्टा है, जोमैटो नहीं। पासवर्ड यूनिक रखो, बर्थडे या लवर का नाम बिल्कुल नहीं, नहीं तो हैक होते ही तुम्हारी एस्थेटिक फीड बन जाएगी कॉमेडी कंटेंट। और हाँ, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो, नहीं तो नेक्स्ट स्टोरी होगी न्यू अकाउंट प्लीज फॉलो बैक। और भाई, स्ट्रेंजर्स को पिक्स मत भेजना, ये कोई शादी.com का फास्ट ट्रैक थोड़ी ना है। अननोन लिंक्स, उस पे क्लिक करना मतलब वायरस को चाय पर बुलाना। तो इंस्टा यूज करो, मस्त रहो, पर सिक्योरिटी के साथ, वरना वायरल तो हो जाओगे लेकिन ऑरा माइनस हो जाएगा।
2: शुरू हो जा।
3: हो गया शुरू, तो अर्ज किया है।
2: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
3: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
2: इरशाद।
3: अरे आगे खाली हो जाएगी।
2: क्या
3: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
3: रोडवेज वाले।
2: ओके ओके।
3: रोडवेज वाले भैया सीट पर 4 सवारी तो अपनी गोदी में भी 3 बच्चे बिठा लेते हैं।
2: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
3: क्या बात कर रहे
2: हो?
3: आगे सुनो।
2: सुनाओ।
3: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
2: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
3: अरे सुनो।
2: बाय।

गाना है फिल्म कसूर से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्कबाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत। और कई बार कोई इंसान इतना अच्छा लगता है लेकिन चाह कर भी आप उसे पा नहीं सकते हैं, चाह कर भी आप उसके करीब जा नहीं सकते हैं। तो इसी पर किसी ने कितना खूबसूरत लिखा है कि मैं चाहूं भी तो तुमको पा नहीं सकता और ये बात मैं किसी को समझा नहीं सकता, मेरा दिल भी इसी बात को सोच के रोता है, ऐसी क्या मोहब्बत जो जता नहीं सकता। हर रात की अब यही हकीकत है कि एक दिल है जिसकी आंखों में उम्मीद रोती है, मेरा दिल है, पर ये बात मैं उसको समझा नहीं सकता। तो ऐसे ही कई बार कुछ बातें आपके जहन में चलती हैं और शायराना इश्क में इन बातों पर बातें होती रहेंगी। फिलहाल वक्त है गाने का, जादू है नशा है अगला गाना, चलिए सुनते हैं इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके पर।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
5: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

गाना है फिल्म चलती का नाम गाड़ी से और गाना है किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत आवाज में। और इसी गाने के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ शो इश्क बाजियां में हूँ इश्क वाली गीत। और अब समय है रेट्रो इश्क का, जहां मैं लेकर आई हूँ आज एक और ही बहुत ही खूबसूरत सी प्रेम कहानी, उस जमाने की प्रेम कहानी। बॉलीवुड में तमाम प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनको उनके रिश्ते की मुकम्मल मंजिल मिल गई, वहीं कुछ प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनकी दास्तान अधूरी रह गई, जिनका अंत बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो जो मेमोरीज क्रिएट हुई ना वो बहुत अच्छी थी। तो इन्हीं यादों को आप तक पहुंचाती हूँ रेट्रो इश्क के जरिए। और आज एक ऐसी ही लव स्टोरी लेकर आई हूँ कि जिन्हें प्यार हुआ, इकरार हुआ और मंजिल भी नहीं मिली। ये बहुत ही खास सी लव स्टोरी है जिससे आज आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन अभी वक्त गाने का है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: सुनो सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे
2: क्या कहा?

आरडी बर्मन साहब का म्यूजिक, लता जी और किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। देखिए, जब किसी की याद आती है और ये पुराने गाने जब हम सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो इतनी सारी यादें इकट्ठी हो जाती हैं, इतने सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे होते हैं। और ये क्या जमाना था ना, जहां प्यार इशारों में हुआ करता, अगर किसी से इश्क हो तो वो आंखों से ही पता चल जाता, अगर किसी से कोई बात कहनी हो तो वो इशारों में ही हो जाती। और हाँ, जहां किसी को दिल की बात कहने में, इजहार इश्क करने में बहुत वक्त लगता, पहले उसे समझा जाता, फिर खतों के जरिए उस तक अपनी बात पहुंचाई जाती, और फिर ये भी देखा जाता कि हाँ, क्या उसे भी उतना ही इश्क है। क्या खूबसूरत सा जमाना था ना ये, जहाँ किशोरदा के, रफी साहब के, लता जी की आवाज में बहुत खूबसूरत से गाने होते और किसी को ये गाने डेडिकेट भी किए जाते। उसी रेट्रो वाले जमाने की, उसी रेट्रो इश्क की बातें होंगी यहाँ पर। अभी वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: क्या आपको पता है कि फेसबुक पे आपके रिलेटिव से ज्यादा खतरनाक सिर्फ एक ही चीज है और वो है हैकर्स। तो उनसे प्रोटेक्शन चाहिए तो कुछ मेजर्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहले बात करते हैं पासवर्ड की। लेट मी गेस, आपका पासवर्ड क्या ही होगा? पासवर्ड 123 या फिर 12345? अरे भाई, तुम्हारा पासवर्ड इतना वीक है कि मेरी नानी भी गेस कर ले। तो सबसे पहले अपना पासवर्ड ऐसा बनाओ जैसे अपने क्रश को प्रपोजल लेटर लिख रहे हो, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और अनप्रिडिक्टेबल। याद रखो दोस्तों।

कुछ वादे सच्चे होते हैं, लेकिन ये वादे ताउम्र निभाए जाएं ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसे मंजूर नहीं होती हैं, और ये रिश्ते, ये जो मोहब्बत होती है, ये अक्सर अधूरी रह जाती है। गाना है फिल्म हम किसी से कम नहीं, और गाना है पूर्णिमा और रफी साहब की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, और मैं

इश्क वाली गीत और रेट्रो इश्क में आज बातें होने वाली हैं एक उस जमाने की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। और जैसे कहते भी हैं कि जो सच्ची मोहब्बत होती है वो अक्सर अधूरी रह जाती है, और ये अधूरी मोहब्बत थी राज कपूर साहब और नरगिस की। वैसे दोनों की रियल लाइफ में तो बहुत ही अच्छी जोड़ी थी, बहुत ही सुपरहिट जोड़ी थी। इवन लोगों को ये जोड़ी इतनी ज्यादा पसंद आई कि लोगों ने बैक टू बैक फरमाइशें की इस जोड़ी को ऑन स्क्रीन देखने की। असल जिंदगी में भी उतनी ही जोड़ी ये एक दूसरे के लिए परफेक्ट थी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों कभी साथ नहीं रह पाए। इनकी स्टोरी भी ना बिल्कुल फिल्मी स्टोरी जैसी है, इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त है गाने का, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
2: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
0: हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां। मैं हूं इश्क वाली गीत और सेगमेंट है रेट्रो इश्क। बातें चल रही हैं राज कपूर साहब और नरगिस की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। एक ऐसा इश्क जो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उस इश्क में एक अलग सी बात थी। ये इश्क बेपनाह था। वैसे हिंदी सिनेमा में कई प्रेम कहानियां बहुत फेमस हुई जिनके आज भी चर्चे होते हैं। उन्हीं में से ये जोड़ी थी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त की। इनकी दास्तान बहुत ही खूबसूरत है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर भी प्यार से ये दिल भला क्यों डरा। ये गाना दोनों पर एकदम फिट बैठता है। दोनों के बीच बेपनाह प्यार था, फिर भी ये दास्तान कभी पूरी नहीं हो पाई। राज कपूर और नरगिस की सुपरहिट जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी। रियल लाइफ में भी दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, पर किस्मत को दोनों का साथ मंजूर नहीं था। और इन दोनों की केमिस्ट्री तो वैसे फिल्मों में गानों में भी दिखाई देती थी। और जब इनकी पहली मुलाकात हुई, उस वक्त नरगिस हिंदी सिनेमा में काफी अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी थी। इन दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी बहुत अलग है और बहुत ही खास है। दरअसल राज कपूर मिलने गए थे नरगिस की माँ से, लेकिन दरवाजे पर सबसे पहले इनकी नजर जब पड़ती है नरगिस पर, तो ये उन्हें देखते रह जाते हैं और अपना दिल हार जाते हैं। और इसे कहते हैं पहली नजर की मोहब्बत। जहाँ ये इस कदर अपना चैन खो देते हैं कि ये दोस्ती कर लेते हैं नरगिस के साथ, और ये दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। तो इस तरह से इनकी पहली मुलाकात होती है। और इसके बाद दोनों ने काफी सारी फिल्में एक साथ की। बरसात के बारे में अगर बात करूं, 1949 में जो आई थी, उसके बाद प्यार, आवारा, आशियाना, पापी, श्री 420, चोरी चोरी, बहुत सारी फिल्मों में ये एक साथ नजर आए। और मैंने कहा ना, उस टाइम की बहुत डिमांडिंग जोड़ी थी ये। और आज इसी जोड़ी के बारे में बातें चल रही हैं। फिलहाल वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां। मैं हूँ इश्क वाली।

0: शुरू हो जाओ।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे रे।
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: मारी हरकतें जानता होगा।
1: अब पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोए हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: अब तू बोलता रहे भाई, हम चलते हैं।

गाना है फिल्म चुपके चुपके से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है रेट्रो इश्क, जहां बातें चल रही हैं रेट्रो की बहुत ही फेमस जोड़ी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में, जहां नरगिस से पहली नजर का प्यार हो जाता है राज कपूर साहब को और वो उनके प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो जाते हैं। राज कपूर साहब उस वक्त शादीशुदा थे, इतना ही नहीं उनके बच्चे भी थे और ये बात नरगिस को भी पता होती है, लेकिन इसके बावजूद वो भी प्यार कर बैठती हैं राज कपूर से और इसके बाद हर बार वो राज कपूर के साथ फिल्मों में आने लगती हैं और हर फिल्म उनकी हिट हो जाती है और दोनों ऐसे ही बैक टू बैक बॉलीवुड को बहुत हिट फिल्में दे रहे थे। उस दौरान इन दोनों को बॉलीवुड के क्लासिक कपल भी कहा जाता, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है और 9 साल के एक रिश्ते में रहे जहां नरगिस ने राज कपूर का इंतजार किया 9 साल। शादी भी करना चाहती थी लेकिन राज कपूर चाह कर भी उनके पास लौट कर ना आए और इस तरह से ये जो मोहब्बत थी ये इश्क की कहानी अधूरी रह गई। यहाँ बातें हुई राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में और फिलहाल वक्त है गाने का। शो इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना,
3: और अगर सफर को खूबसूरत है बनाना तो गाड़ी नियंत्रित स्पीड पर ही चलाना।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके लेकिन

बहुत खूबसूरत है और गाना है फिल्म ए दिल है मुश्किल से। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। आपके दिलों की बातें जो हैं वो आप तक पहुंचानी है और आज एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आई हूँ दिल दियां गल्ला में। कहते हैं ना कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और दोस्ती होती भी है तो धीरे धीरे वो दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। और बहुत सारे लोग ना इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार क्या होता है ऐसा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती प्यार में बदल जाती है, जबकि दोनों के बीच एक बहुत ही थिन लाइन होती है। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी के साथ थोड़ा ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जब आपको उसकी हर बात से फर्क पड़ता है, चाहे दोस्ती क्यों ना हो, जब आप उससे अपने दिल की हर बात शेयर करते हैं और सेम सामने से भी वही फीलिंग है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स के जरिए ये दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। इसी के बारे में बातें होंगी, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, अगला गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से हमनवा।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल

0: पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
1: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
3: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाओ, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
4: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
5: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना। रेडियो महारानी 89.6 एफएम सुन रहे हैं आप। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है दिल दिया कल्ला। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, मैसेज है मेघा का, और ये लिख रही है कि दोस्ती को प्यार में बदलने से कैसे रोका जा सकता है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना कि कुछ फीलिंग्स पर तो आपका कंट्रोल नहीं होता, वो हो जाती हैं और कई बार गो विद द फ्लो आपको भी हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं जरूर आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जनाब वो दोस्ती ही क्या जिसमें प्यार ना हो, ऐसा तो लोग कहते हैं, पर प्यार तो वो हसीन एहसास है ना जो हर रिश्ते में एक अलग सी बात ला देता है। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि प्यार मर्जी से नहीं होता, ये हो जाता है। आप मानेंगे नहीं, कई बार अगर आप दिल से एक्सेप्ट कर लेना कि सामने वाले से आपको प्यार नहीं होगा तो यकीनन प्यार नहीं होगा। अगर आपने दिल से ही सोच लिया है कि आपके दिल में है कुछ उसके लिए, तो आप खुद को कैसे रोक पाएंगे। इसीलिए अगर आप पहचानना चाहते हैं कि आपको किसी से प्यार है या नहीं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, आप ये देख सकते हैं कि आपको उसकी चिंता तो नहीं रहती। जैसे आप जब भी उसके बारे में सोचते हैं किसी बात को लेकर, तो आप परेशान हो जाते हैं, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम से आप परेशान होते हैं, और आप हर बार कोशिश करते हैं कि वो इंसान अच्छा फील करे, आप उसे सही रास्ते पर ले जा पाए, या आपको किसी की याद आती रहती है। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो मुबारक हो मेरे दोस्त, आप प्यार में हैं। और अब अगर आप प्यार में हैं तो ये पक्का है, पर प्यार जो है वो बहुत से रिश्तों में हो सकता है, जैसे कि दोस्ती का रिश्ता। जैसे कि मेघा का सवाल आया है कि कैसे बचा जाए, तो दिक्कत प्यार में नहीं है, प्यार को समझने में है। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे सिवा तुम्हें और कोई प्यार नहीं करता, तो सामने से ये रिप्लाई आता है कि आपको भी इसी तरह की सेम फीलिंग्स हैं। तो मेघा मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि दोस्ती में प्यार होता है, लेकिन दोस्ती में और प्यार में एक थिन लाइन होती है। दोस्ती में किसी की केयर होती है, किसी को आप समझते हैं, लेकिन हाँ जब इमोशंस का बहुत जुड़ाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप प्यार की तरफ खिंच जाते हैं। तो आप अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं वाकई में इस प्यार से बचना, और अगर बचना नहीं चाहते तो गो विद द फ्लो। फिलहाल वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

संग हूँ तेरे गाना है फिल्म जन्नत टू से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां। मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्लां, और प्यार के बारे में बातें चल रही हैं। ये जो प्यार होता है ना, कई बार बहुत अजीबो गरीब माहौल में हो जाता है। आप सोचते रह जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। एग्जाम्पल के लिए, किसी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है और उससे आपको प्यार हो जाए, जहां एक दूसरे से आपने बहुत सारी बातें की हैं, रिश्तों पर एक दूसरे को बहुत सारी सलाहें दी हैं, एक दूसरे का मजाक बनाया है पुराने रिश्तों पर, लेकिन आपको एक टाइम बाद एहसास होता है कि आपको तो उसी से प्यार हो गया, बल्कि आपने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, आपके मन में तो कुछ ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ऐसा आपने सोच लिया, और आप फिर ये भी सोचते हैं कि सामने वाले के मन में अगर ऐसी कोई चीज ना हो, ऐसी कोई फीलिंग ना हो, तो खामखा ही गलत फहमियां बढ़ेंगी और गलत कदम उठाकर आप उसकी दोस्ती को भी खो दोगे। इसीलिए आप शायद सोचते हैं कि आपको उसकी जिंदगी से अब दूर रहना है या उस इंसान से दूर चले जाना है। और इसमें होता यह है कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती कहीं खो जाती है, कहीं गायब हो जाती है। तो आपको खोना नहीं है, और आपको ये भी जानना है कि सामने वाले को भी उतना ही इश्क है या नहीं है, या क्या फीलिंग है। तो इसके बारे में बात करने वाली हूँ शो इश्क बाजियां। मैं हूँ इश्क वाली गीत, और गाना है अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: आज की सेफ्टी टिप्स सुन लो, वरना आपकी लाइफ बन जाएगी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी रील। रूल नंबर 1, जियो टैग मत लगाओ, क्योंकि ये इंस्टा है, जोमैटो नहीं। पासवर्ड यूनिक रखो, बर्थडे या लवर का नाम बिल्कुल नहीं, नहीं तो हैक होते ही तुम्हारी एस्थेटिक फीड बन जाएगी कॉमेडी कंटेंट। और हाँ, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो, नहीं तो नेक्स्ट स्टोरी होगी न्यू अकाउंट प्लीज फॉलो बैक। और भाई, स्ट्रेंजर्स को पिक्स मत भेजना, ये कोई शादी.com का फास्ट ट्रैक थोड़ी ना है। अननोन लिंक्स, उस पे क्लिक करना मतलब वायरस को चाय पर बुलाना। तो इंस्टा यूज करो, मस्त रहो, पर सिक्योरिटी के साथ, वरना वायरल तो हो जाओगे लेकिन ऑरा माइनस हो जाएगा।

गाना है फिल्म कभी हाँ कभी ना से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और यहाँ पर बातें चल रही हैं कि जब किसी से दोस्ती हो और वो प्यार में बदल जाए, और आपको ये डर रहे कि सामने वाले को अगर ये बात पता चलेगी तो वो जो खूबसूरत सी दोस्ती है वो भी कहीं ना कहीं खो जाएगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको टाइम बहुत कम स्पेंड करना है। अब आप ये सोचेंगे कि गीत ऐसी बात क्यों कह रही है, बल्कि टाइम तो ज्यादा गुजारना चाहिए तभी तो आप समझ पाएंगे। लेकिन नहीं, आपको उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सा समय अपने लिए बिताना है। ध्यान भटकाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल ना रहें, उनके मैसेजेस का और कॉल्स का जवाब देने में थोड़ा सा टाइम लगाएं यार, ताकि आपको भी तो पता चले कि उनको इंटरेस्ट है आप में या नहीं। तो आपकी जो गैर मौजूदगी है वो उन्हें आपकी याद दिलाने वाली है, और उन्हें लगेगा कि आपको ऐसा क्या हो गया कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इस बारे में सोचेंगे। और कहते हैं ना, जो चीज हमसे दूर जाने लगती है हमें तभी उसका ख्याल आता है, और हो सकता है कि आपकी गैर मौजूदगी उन्हें आपके ना होने का एहसास दिला दे, और उन्हें एहसास दिला दे कि शायद आपने उनमें इंटरेस्ट नहीं लिया था, इसीलिए वो कहीं चले गए हैं, कहीं खो गए हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि उनको भी मोहब्बत है या नहीं, और यहाँ दोस्ती भी नहीं टूटेगी और आपको भी पता चल जाएगा। और देखिए, इतनी सारी बातें हो गई हैं सेगमेंट दिल दियां गल्ला में, अभी मेरे जाने का है समय। मैं मिलूंगी आपसे कल जहां ढेर सारी बातें होंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जांच।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो।

0: कदी
1: कुड़ी मैनू कहती
2: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
3: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
4: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं।
3: तो टेढ़ी मेढ़ी राय, उल्टी पुल्टी बातें,
2: इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लुटेर हो।
1: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
2: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रियान इन टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BAD शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।

0: वजह।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद,
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ को पेड़ पर दिल में लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: What, Chunka?
1: Life on Wheels. जहाँ जिंदगी है वहाँ हम हैं। मैं हूँ एम्बुलेंस। हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
2: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी, सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है।
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: Cinemas पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझे मुझसे मिलाया है।

आपको याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हो है?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ, रात बाकी बात बाकी।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM। कुछ हट

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाबा।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है, अच्छा।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: भेजा सरकार।
1: फैनो थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: इरादा है
1: शादी और तुमसे,
0: शादी का इरादा है
1: शादी ना पापा ना,
0: मगर क्यों
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: मोना,
0: सुनो तो सुनो तो,
2: आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: Wheels of Life, Wheels of Hope, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: नजर से बतला दो जहां को, समझा दो खिजा को, आए जाए यहां।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदे सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिए। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता।

जो तुम्हारी अवस्था है, जहां तुम फंसे हुए हो, वहां नाम जप करने लगो। इसमें कोई पैसा नहीं खर्चा होना, इसमें किसी के सहयोग की आपको जरूरत नहीं, इसमें कोई स्वाध्याय की जरूरत नहीं है, इसमें किसी पवित्रता अपवित्रता की बात नहीं है, आपके ऊपर किसी भी तरह के कोई सिद्धांत का शासन नहीं है। जैसे भी हो, जहां भी हो, जो भी हो, बस नाम सुमिरन करना प्रारंभ कर दो। सबसे प्रार्थना है, आप अपने कल्याण के लिए न सही, भगवत प्राप्ति के लिए न सही, पर जीवन चैन से जी सके, कोई हमारी रक्षा कर सके, कोई हमें सही रास्ता दिखावे, कोई शांति सुख हमारा ना छिन पाए, ऐसा कोई समर्थ तो

इसलिए 24 मिनट नाम जप कर लो, 24 घंटे में बिल्कुल छूट है, 24 मिनट नाम जप कर लो। थोड़ी श्रद्धा बने तो अच्छा, ना बने तो कोई बात नहीं, हमारी प्रार्थना मान करके शुरू कर दो। आप देखो बहुत लोगों से मित्रता करते हैं, उनकी बात मानकर घंटों उनके साथ ताश खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अन्य क्रीड़ाएं करते हैं। आप थोड़ी सी मित्रता हमसे भी कर लीजिए, हम हाथ जोड़कर चरण वंदना करके आपके मंगल के लिए, आपके परम सुख के लिए कहते हैं। यदि आप 24 मिनट हमारे करुणा निधान प्रिया प्रीतम का नाम जप कर लिए, फिर आप देख लेना परिणाम क्या होगा, महामंगल। अगर एक घड़ी भी आपको ऐसा रुचि ना बैठे तो आधी घड़ी, 12 मिनट, 24 घंटे में 12 मिनट दे दो हमारे प्रभु के नाम के लिए, ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक नाम त्रेलू कहीं तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। हमारे प्रभु बहुत कृपालु हैं, लाई के सम भजन को मानत मेरु समान। प्रार्थना मान लीजिए, नहीं तो पछताओगे। कोई तुम्हारा न रिश्तेदार है, न यहां तुम्हारा कोई मित्र है, न यहां तुम्हारा कोई शत्रु है, तुम केवल कमाने आए हो इस मृत्यु लोक में भगवान नाम रूपी धन, पर ठगों ने तुम्हें भ्रमित करके मनोरंजन में फंसा दिया। काम क्रोध की क्रीड़ाएं ये हमारा नाश करती हैं, हम जान नहीं पाते, ये मन बुद्धि ठग का काम हमारे साथ कर रहे हैं। निष्काम हो करके, क्षमावान बन करके, नाम जप करते हुए जो हमें परम पद की प्राप्ति का ये अवसर मिला, हम काम क्रोधाद से युक्त होकर के अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। पर शुद्ध हृदय ना होने के कारण ये बातें आपको समझ में नहीं आती। इसलिए प्रार्थना है, किसी की तो मान ले। ऐसा तो नहीं कह रहे कि आप 8 घंटे पद्मासन लगा के बैठे, 24 मिनट मात्र, 25वां ना बैठना, 24 मिनट आप एक नियम ले लो। जो वृंदावन वास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है, उनका तो श्वास श्वास समर्पित हो रहा है। नाम रूप लीला धाम चारों समान है, वो धाम वासी तो निरंतर सच्चिदानंद के संग में है, धाम सच्चिदानंद में है। धाम वासी बिना नाम के ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ का परमाणु ही ऐसा है, यहाँ की रजरानी की महिमा ऐसी कि उसके अंदर भागवती की स्मरण, कानों में भागवतिक शब्द, नेत्रों में महाभागवत, हरि पार्षद वैष्णव जनों के दर्शन, यहाँ तो सौभाग्य लुटता घूम रहा है, यहाँ तो कल्याण मारा घूम रहा है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं जो नाम धाम रूप लीला से विमुख होकर विषयों में रमण करते हैं, वो एक घड़ी हमारे प्रभु के लिए दे दें, फिर वो देखे उनका जीवन कैसा श्रृंगारित होता है। अभी उजड़ा हुआ जीवन है, उजाड़ दिया इन विकारों ने आपको। थोड़े दिन नाम जप कीजिए, फिर ऐसा अनर्थ निवृत्ति होकर रुचि होगी कि आपसे कसम दिलाई जाए कि अब आप नाम जप ना करना, तो भी आप नहीं, कसम का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। बिना नाम जप के आप जी नहीं सकते। ये नाम ऐसा अमृत है, यह ऐसा महाअमृत है कि जिसने चखा वो निहाल हो गया और दूसरों को निहाल करने वाला बन गया। अंतिम समय सुधर जाए ये खास बात है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाए वैसे वैसे आपकी भूमिका बढ़नी चाहिए अध्यात्म की। आप खिलवाड़ में मत अपने जीवन को नष्ट कीजिए। यावत स्वस्थमिदं कलेवरम यावत च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है, शरीर स्वस्थ है, प्रसन्न मुद्रा में आप निश्चय करो मुझे केवल प्रियालाल